इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जिसके प्रयोग से हम जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। तो आज से प्रयास करें कि इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: छह बजकर 44 मिनट का समय, आप हैं पुष्पांजलि में 100.7 FM रेनबो पर।

किसी को संगति में रहने से तो अच्छा है अकेले रहना, भला उस संगति में रहने से क्या लाभ जो उन्नति के स्थान पर पाप और पतन के गर्भ में ले जाए।

प्रभु की भक्ति सदैव जीवन को प्रकाश दिखाती है। सच्चे मन से प्रार्थना करें और किसी से बैर न रखें। दूसरों के लिए मंगल कामना करेंगे तो ईश्वर हमारा भी मंगल करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा दीजिए अनुपमा को आज की पुष्पांजलि से। सुनते रहिए रेनबो।

102.2 FM पर कनेक्ट हैं आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग। आज मंगलवार है, दिनांक 23 जून 2026, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज का सूर्योदय सुबह 5:16 पर हो चुका है और सूर्यास्त सायंकाल 7:04 पर होगा। गुड मॉर्निंग कानपुर, 102.2 एफएम के सुरीली तरंगों पर आज आपके साथ हूं मैं आरजे मीनाक्षी। उम्मीदों से भरी इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के जीवन में सफलता, उत्साह और मुस्कान लेकर आए। तो चलिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू कर रही हूँ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, और शुरुआत हो रही है इस सॉन्ग के साथ।

102.2 FM पर हो चुकी है आपके मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग रेडियो शो की शुरुआत। गुड मॉर्निंग कानपुर है इसका नाम। और आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक सुविचार। राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।

जिंदगी में कई रास्ते ऐसे आते हैं दोस्तों जहां हमें अकेले ही चलना पड़ता है। पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर का सफर एक ऐसा सफर है जहां हम सब साथ मिलकर चलते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज आप हमारे चैनल से कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो एंजॉय करने वाले हैं। सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। रसबहार प्रोग्राम आप तक आएगा सुबह 9:00। विविधा में आज होगा उपशास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। समय है सुबह 9:45। दिन में 11:00 आप सुनेंगे प्रोग्राम हमनवा। आज इस प्रोग्राम में जोड़ी है मीनाक्षी और महिमा की। आरजे महिमा म्यूजिक आर प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगी शाम 3:00, यानी कि आज की प्रस्तुति इन्हीं की होगी। शाम 4:00 आप सभी की फिल्मी गीतों की फरमाइश पूरी की जाएंगी, प्रोग्राम होगा आपकी पसंद। और अभी की बात करें दोस्तों तो अभी आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर आरजे मीनाक्षी के संग। सुबह के 7:11 हो चुके हैं। 102.2 की कनेक्टिविटी पर बने रहिएगा हमारे संग क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने आप तक पहुंचा रहे हैं हम। फिलहाल आ रहा है ये खूबसूरत सा गाना।

प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में, चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज कल या कुछ दिनों तक कैसा रहने वाला है तापमान का हाल। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार बताए गए हैं, पर वर्षा की कोई भी संभावना नहीं है और लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार जताए गए हैं। आज के अधिकतम तापमान के बारे में आपको बता दें तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो घर से निकलने से पहले बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ निकलिएगा, डिहाइड्रेट रहने की पूरी कोशिश करिएगा और हाँ, अगर आप एसी से बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत बाहर ना निकलें, पहले अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लें, संतुलित कर लें, तभी बाहर निकलें, क्योंकि जब सेहत है तभी सारे काम हम अच्छे से कर पाते हैं।

मॉर्निंग कार्यक्रम, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर, सिटी की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर से। प्रोग्राम को लेकर आपके संग मैं आरजे मीनाक्षी। चलिए अब शहर से संबंधित कुछ खबरें आप तक पहुंचा देती हूं। साथियों, सीएसजेएमयू में एआई फॉर मीडिया सर्टिफिकेट कोर्स की हो रही है शुरुआत। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने मीडिया शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में नए शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 से सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मीडिया शुरू किया जाने वाला है। पत्रकारिता के सभी पाठ्यक्रमों में एआई टूल्स को शामिल कर सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। अगली खबर भी सीएसजेएमयू से ही रिलेटेड आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए सोमवार का दिन जो है वो राहत भरा रहा है। जी हाँ, प्रवेश प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि सिर्फ कल तक सीमित थी, उसे विस्तारित कर दिया गया है आगे तक। अब ऐसे तमाम छात्र छात्राएं जो अभी तक इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे किन्हीं कारणों से अगर 22 जून की तय सीमा तक प्रवेश नहीं ले पाए थे, तो सभी को चिंता थी कि अब हम क्या करें, डेट तो निकल गई है। तो ऐसा अब नहीं है, आपको एक मौका और मिल गया है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 28 जून तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार लापरवाही ना करें, 28 जून तक आप जो प्रक्रिया है एडमिशन की, इसे जरूर पूरी कर लें। पंद्रह परिषदीय स्कूलों को मिलने वाली हवा की जांच के बारे में खबर है। जी हाँ, 15 परिषदीय स्कूलों की हवा का हाल जानेगा आईआईटी। 15 परिषदीय स्कूलों को मिलने वाली हवा की जांच आईआईटी कानपुर करेगा। यहाँ कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी की ओर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। संस्थान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा विभाग ने मुहर भी लगा दी है। सुबह के 7:26 और 10 सेकंड हो रहे हैं 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम चल रहा है। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले गाने की ओर। प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे मीनाक्षी के संग।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: सुबह के 7:34 और 58 सेकेंड, कहना चाहिए कि 7:35 हो चुके हैं और टिक टिक करती हुई जो हमारी सेकेंड्स वाली जो सुई है वो बढ़ती चली जा रही है। 10 सेकेंड्स हो रहे हैं दोस्तों। 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। चलिए जान लेते हैं इतिहास के आईने में क्या है खासियत आज के दिन की। प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म आज की तारीख में यानी 23 जून को सन 1936 में हुआ था। वो भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। 23 जून साल 1960 में जापान और अमेरिका के बीच हुआ था सुरक्षा समझौता। 23 जून 1953 में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में कैद के दौरान मृत्यु हो गई थी। आते हैं सन 1980 में, तो आज की तारीख पर सन 1980 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तेईस जून 2014 का दिन इसलिए भी खास है कि इस दिन गुजरात में रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में आ रहा है आप तक प्रोग्राम का ये अगला गाना।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या क्या है आप तक पहुंच रही हैं ये खबरें, आरजे मीनाक्षी है इन खबरों को लेकर आपके संग। सहायक प्रोफेसर पदों की पात्रता निर्धारित करने वाली यूजीसी नेट परीक्षा बीते कल दिनांक 22 जून से शुरू हो चुकी है और ये परीक्षा आगामी 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा ये परीक्षा रोजाना दो पालियों में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कंप्यूटर आधारित मोड यानी सीबीटी मोड में कराई जा रही है। दिसंबर तक हो जाएगा भारत ईयू के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते रविवार को बताया कि भारत और 27 देशों का समूह यूरोपीय यूनियन दिसंबर तक मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। अगले साल फरवरी मार्च से इस समझौते के लागू होने की उम्मीद है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इस हफ्ते ट्रेड समझौते पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश भारत में सुबह के 7:45 हो चुके हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग कानपुर, प्रोग्राम चल रहा है 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर। आ रहा है आप तक प्रोग्राम का ये अगला गाना।

चले डालते हैं एक नजर खेल के गलियारों में। खेल समाचारों में सबसे पहले बात फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप स्टेज अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। टूर्नामेंट में आज 23 जून को 4 अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। ग्रुप आई में फ्रांस का मुकाबला ईरान से होगा। इसी ग्रुप में नॉर्वे और सेनेगल आमने सामने होंगे। ग्रुप जे में जॉर्डन और अल्जीरिया की टक्कर होगी। ग्रुप के में पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अगली खबर है, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 23 जून 2026 को केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो फिटनेस, खेल उत्कृष्टता और खेलों में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये अपने कार्यक्रमों की शुरुआत तिरुवनंतपुरम में चकाई आईटीआई से शंकुमुगम बीच तक आयोजित साइकिल प्रतियोगिता साइकिलिंग बाय द सी में भाग लेकर करने वाले हैं। 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही है आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड प्रोग्राम की होस्ट आरजे मीनाक्षी। और अब पहुंचा रही हूं दोस्तों प्रोग्राम का ये अगला गाना।

और साथियों अब हम आ पहुंचे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर के आखिरी म्यूजिकल ट्रैक की ओर। इससे पहले कि हम आप तक पहुंचाएं आखिरी म्यूजिकल ट्रैक प्रोग्राम का, शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में सोशल मीडिया संदेश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में लिखा है कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, 3 पिलर्स बताए गए हैं, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। और अगली पोस्ट यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सोशल मीडिया हैंडल से हमें मिली है। इनकी पोस्ट में लिखा है कि वर्षा ऋतु नव सृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चातुर्मास का ये पावन काल हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। आगे लिखते हैं कि वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती रहती हैं, अतः उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है, अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी रखें। तो उम्मीद है कि हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इस जरूरी बात को जरूर ध्यान से सुन रहे हैं और हम इसे फॉलो भी करेंगे। आ रहा है प्रोग्राम का ये आखिरी म्यूजिकल ट्रैक आप तक, इसके बाद यहीं से आरजे मीनाक्षी लेती है इजाजत। ठीक 8 बजे आपको ले चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़

0: 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदान का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट

0: प्रस्तुत करेंगे। एसआईटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है।

अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का

0: ग्रहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: Mr. Modi said nearly 25

सुबह के 8:30 हो चुके हैं साथियों, वायदे के अनुसार 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर हाजिर हो चुकी हूं मैं आरजे मीनाक्षी लेकर प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। प्रोग्राम का पहला गाना आप तक आ रहा है श्री 420 फिल्म से। आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की, बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म पर्दे पर आई थी 1955 में। गीत को फिल्माया गया है राज कपूर और नरगिस पर। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल से ये प्रोग्राम का पहला गाना

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना गाइड फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र का लिखा ये गीत है, एसडी बर्मन का संगीत है, वहीदा रहमान और साथी कलाकारों पर इस गाने को फिल्माया गया है। पर्दे पर यह फिल्म आई थी सन 1965 में।

प्रोग्राम का अगला गाना फिल्म हम साया से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जॉय मुखर्जी और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। ये गीत शिवन रिजवी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का है।

0: सुबह के 8 बजकर 44 मिनट और 50 सेकंड सो रहे हैं। चल रहा है प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर। प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपसे मिलते हैं और सुनवाएंगे प्रोग्राम के कुछ और भी फिल्मी नगमे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे संग यानी 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

सुबह के 8:48 हो चुके हैं साथियों। 102.2 FM पर चल रहा है प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। आ रहा है प्रोग्राम का अगला गाना महेंद्र कपूर और सलमा आगा के मिले जुले स्वरों में। सुनवा रहे हैं इस गाने को निकाह फिल्म से। हसन कमाल के ये बोल हैं, धुन बनाई है रवि ने। गीत को फिल्माया गया है राज बब्बर और सलमा आगा पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1982 में।

साथियों, एक एक गीत को सुनवाते हुए आ पहुंचे हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम के आखिरी गाने पर। और ये आखिरी गाना आप तक आ रहा है जिसे फिल्माया गया है बबीता और राजेंद्र कुमार पर। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। ये फिल्म है अनजाना। फिल्म के इस गाने को रचा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1969 में। तो अब इस गाने को पहुंचा रही हूं आप तक, और इसी गाने के साथ फिलहाल सुनो की पुरानी महफिल से आरजे मीनाक्षी को दीजिएगा इजाजत। मिलूंगी अगले प्रोग्राम में। एक पहले इस गाने को सुन लीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर अगले प्रोग्राम में मिलूंगी आपसे।

और इस गाने के संगीत सुरों की पुरानी महफिल से यहाँ पर हम ले रहे हैं विदा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले प्रोग्राम में। अगला प्रोग्राम आप सभी जानते हैं कि रस बहार प्रोग्राम है और उसका आप सभी को इंतज़ार है। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप कनेक्टेड 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट है ये रेनबो कानपुर के संग। यहाँ प्रोग्राम रजबहार का नाम तो मैं पहले ही आपको बता चुकी थी। इस प्रोग्राम को लेकर आपके संग में आरजे मीनाक्षी। साथियों, खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। खेल केवल मैदान में ही नहीं खेले जाते, खेल तो हम तब भी खेलते हैं जब जीवन में नई चुनौतियों का हम सामना करते हैं। खेल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। केवल मनोरंजन का एक जरिया ही नहीं होते खेल, बल्कि जिंदगी को संतुलित और ऊर्जावान बनाने का एक माध्यम भी तो होते हैं ना। आज खेल की बात मैं इसलिए कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि आज अवसर भी है तो दस्तूर भी है, तो बात करना तो बनता है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है जो कि हर साल 23 जून को मनाया जाता है। बाकी की बातें आपसे बाद में होंगी, पहले आप तक पहुंचा रही हूं प्रोग्राम का ये पहला गाना।

चाल का न कोई चाल चलन है, दो गलापन एक ही नियम है, अनेक एक पे एक है भारी, एक अनेक में कैसी यारी, एक एक का एक एक होता है, दो एक से एक

है भारी, एक अनेक में कैसी यारी, एक एक का एक एक होता है, दो एक से एक दो।

अटल नहीं से जी सीखे जीवन भी जीना आ जाएगा। खेल खेल खेल खेल खेल खेल खेल ये आ जाएगा।

ओलंपिक डे रन का आयोजन करती हैं। इसमें सभी उम्र और फिटनेस स्तर के लोग शामिल होकर एक साथ दौड़ते भी हैं और चलते भी हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रखना है। बात वही कि हमारा जो फिजिकल लेबर है वो बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम में हमारा जो टाइम है जाता है इस वजह से।

रसबहार प्रोग्राम में आज बातें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल की क्या अहमियत है हम सभी के जीवन में। भाई जो खेलता है वही खिलता है दोस्तों। सच्चा खिलाड़ी अपनी हार से सीखता है और जीत को विनम्रता से स्वीकार करता है। एक आम जिंदगी में भी अगर हम इन बातों को फॉलो कर लें, यानी कि अगर हमें कहीं पे असफलता मिलती है तो उसे स्वीकार करें, पता करें कि कहाँ हमसे गलती हुई है और आगे बढ़ें तो बिल्कुल हमारा काम बनेगा। और अगर सफलता मिलती है तो बिल्कुल शेख ही ना बगारें, सफलता मिल गई अच्छी बात है, अगले कदम को अच्छी तरह से बढ़ाएं, उस पर ध्यान दें। अगर इस तरह की बातों को हम अपने लाइफ में ले आते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं जो आने वाली होंगी ना ये तो नहीं भी आ पाएंगी, और जो आ चुकी होंगी तो अगले कदम पर हम उन सब के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर कुछ बातें हम इससे रिलेटेड भी आपसे कर रहे हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर साल एक विशेष थीम तय करती है। वर्ष 2026 यानी इस साल की जो थीम है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, ये थीम है लेट्स मूव टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसके तहत लोगों को एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक साथ आकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत सारे देशों में खेल आयोजनों के साथ ही साथ प्रदर्शनियां, संगीत कार्यक्रम हो रहे हैं और सेमिनार्स का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को ओलंपिक के इतिहास और इसके मूल्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम भी कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आप तक अभी पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम रसबहार का ये अगला गाना।

जी हाँ भाई, जो खेल में जीतता है उसे खिलाड़ी ही कहा जाता है और जो हार जाता है वो कहलाता है अनाड़ी। सुबह के 9:28 और 32 सेकंड हो रहे हैं। रजबहार प्रोग्राम में आज बातें खेल से रिलेटेड हो रही हैं क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। साथियों, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत लगभग 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया नगर में हुई थी। उस समय खेल प्रतियोगिताएं देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित की जाती थी। बाद में ये खेल बंद हो गए, लेकिन 1894 में फ्रांस के शिक्षाविद और खेल प्रेमी बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की। 1896 वो साल रहा जब आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो आज सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, इसकी शुरुआत

पहली बार 23 जून 1948 को की गई थी। ये दिन 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद दिलाता है। आ रहा है रजबाहर प्रोग्राम का अगला गाना आप तक।

भाई तमन्ना तो यही रहती है कि घर आए हमारे गोल्ड, यानी कि जो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ी शामिल होते हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कोई खिलाड़ी गोल्ड लेकर आता है, सिल्वर लेकर आता है या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है। बातें आज ओलंपिक दिवस से रिलेटेड भी हो रही हैं, खेल से संबंधित बातें हो रही हैं, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। साथियों, ओलंपिक ध्वज में बने होते हैं 5 रंगीन छल्ले। हम सभी इन छल्लों को देखते हैं, यानी कि जब ओलंपिक की बात आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये छल्ले, इसकी जो पिक्चर है दिमाग में आने लगती है। ये 5 रंगीन छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकता और मित्रता का प्रतीक है। मतलब भले ही हमारी भाषा, संस्कृति और सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर खेलों के माध्यम से हम सब एक हो जाते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है तो देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, देश का गौरव बढ़ जाता है, नेशनल एंथम गूंजता है और पूरा देश गर्व से भर जाता है। 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर

जज्बात प्रोग्राम आज आप तक पहुंचा रही हूं मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड प्रोग्राम की होस्ट आरजे मीनाक्षी। आ रहा है प्रोग्राम का अगला गाना।

भारत ने भी ओलंपिक में कई यादगार उपलब्धियां हासिल की हैं दोस्तों। हॉकी से लेकर शूटिंग, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स तक हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, वो भी मजबूती के साथ। ओलंपिक मशाल की परंपरा की बात करें तो ओलंपिक मशाल की परंपरा प्राचीन यूनान से प्रेरित है। इसका आदर्श वाक्य है फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, यानी तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ मिलकर। ओलंपिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं दोस्तों, बल्कि वैश्विक मित्रता का भी एक उत्सव है। सभी को आज के दिवस की मंगल कामनाएं। आ रहा है प्रोग्राम का अगला और आखिरी गाना आप तक।

जी हाँ, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी सवारे। इस पॉजिटिव बात के साथ आज के दिन की बात की, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और एकता की भावना एक बेहतर समाज का निर्माण करती है। सभी स्वस्थ रहें और खेल भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ें। दीजिए आरजे मीनाक्षी को आज के प्रोग्राम रसबहार से बस यहाँ पर इजाजत। मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे संग, यानी 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलते हैं।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: वन जीरो टू पॉइंट टू एफ एम की फ्रिक्वेंसी पर आपको अब हम सुनवा रहे हैं प्रोग्राम राग रंग। ये विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं और आ रही है आप तक प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति

सुने गई ठुमरी रतियां किधर गवाई रे, इसके साथ ही अब आज राग रंग की यात्रा यहीं पर सम्पन्न होती है। 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर इस समय आप हैं हमारे संग, यानी रेनबो कानपुर के संग।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल हुए अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज स्थित एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इमारत को सील कर दिया है। फॉरेंसिक यूनिट और फायर ब्रिगेड की टीम यहां से जांच के लिए सबूत एकत्र करेगी। इस घटना के बाद संबंधित इमारत को लेकर एलडीए की पहले भी कार्रवाई और पुराने रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2016 में अनधिकृत निर्माण को लेकर इस इमारत को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल SIT गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की जिन 4 हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र से अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोखरनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सधौली, महुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। चंदौली के बलवा थाना क्षेत्र के बिलवानी गाँव में कल शाम भाई बहन परिस्थित के बंधे पर एक साथ खेल रहे थे, इसी दौरान दोनों का पैर फिसल गया जिससे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा,
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC

दोस्तों 10:04 हुए हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और शुरू हो चुका है सुपर हिट सॉन्ग। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
3: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
4: धड़कता है जो हर दिल में
5: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
6: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जय दोस्तों, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में है 100.7 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आज विनय के साथ सुपर हिट सॉन्ग चल रहे हैं, और फिलहाल गर्मी के मौसम में बस इस गाने से ही भीग लीजिए। सुनते रहिए।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या?

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, सुपर हिट सॉन्ग्स पर झूमने के बाद अब वक्त हो चला है कि इस प्रोग्राम से इजाजत ले आपका दोस्त विनय। न्यूज ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक और प्रोग्राम लेकर।

0: 102.2 FM पर हम नवा प्रोग्राम को लेकर आज मैं हूं आपके साथ आरजे मीनाक्षी और आज प्रोग्राम में मेरी हमनवा है।
1: जी हाँ, मैं हूं आरजे महिमा और हमनवा सुनने वाले सभी लिसनर्स को आरजे महिमा का प्यार भरा नमस्कार। और मीनाक्षी जी, प्रोग्राम हमनवा में एक ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू किया जाए।
0: वैसे महिमा, मुझे मेरा तो ये मानना है कि जब दो मतलब क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि बात कहाँ से शुरू की जाए, बल्कि सोचना ये पड़ता है कि बात खत्म कैसे की जाए, क्योंकि बात खत्म होती ही नहीं है। हालांकि जब अनजान लोगों की हम बात करें, जैसे हम कहीं सफर पे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, तो अनजान लोगों से कितने जल्दी परिचय बन जाता है। कुछ हमारे पास विषय ऐसे हमेशा रहते हैं लोगों के पास, जैसे राजनीति है, फिल्में हैं, खेल है ना, और सबसे बढ़िया कि मौसम एक ऐसा विषय मिलता है जिस पर लोग, जैसे आज बड़ी गर्मी है या बड़ी सर्दी है, इस तरह की जैसे ही किसी ने एक सेंटेंस बोला कि फिर देखो कितने सारे लोग उस टॉपिक को जोड़ लेते
1: हैं। की अगर शहर के अपने लोग मिल जाते हैं, कहीं ऐसे लोकल आप ट्रेवल कर रहे हो तो शहर की बातें कि आज भाई ऐसा वहां हुआ, आज ऐसा यहाँ हुआ, या वो सड़क खराब है और यहाँ पर यातायात आज ट्रैफिक बहुत मिलेगा, तो इस तरह की भी जनरल बातें शुरू हो जाती है और पता नहीं चलता है कि वो सफर उन अजनबी लोगों के साथ कैसे हमारा पूरा हो गया।
0: तो भाई बातों का दौर ही महिमा ऐसा होता है कि जब बातें हो रही, काम की बातें हो रही तो ठीक है, कभी कभी बतिया बनाने वाले लोग भी बहुत सारे मिलते हैं। नहीं, लंबी लंबी सी उनकी बातें होती है कि वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो चार लोग केवल सुन रहे होते हैं।

0: आधुनिक जीवन।
1: और आज पुण्यतिथि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। और इसके अलावा आज ज्ञान विज्ञान टॉपिक में हम बात करेंगे प्रतिध्वनि यानी कि इको क्या होता है।
0: बहुत अच्छा टॉपिक है आज ज्ञान विज्ञान में। रेसिपी को अभी हम रहस्य में रखते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्शन हमारे श्रोताओं का बना रहेगा कि भला आज खाने में क्या बन रहा है।
1: बस आपको ये हिंट देते हैं कि रेसिपी हम कोशिश करते हैं कि सीजनल चीजों की हम रेसिपी लेके आए, तो आज कुछ ऐसा ही एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो सीजनल हरी सब्जियां जो आती हैं तो उन्हीं से मिलती जुलती एक रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा मीनाक्षी जी अब आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत संवेदनशील विषय है और वो है इंटरनेशनल विडोज डे। तो ये इंसान मतलब संवेदनशील होने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ा है। आज यानी 23 जून को हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि उन महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों और सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करना जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। और ये दर्द जो होता है ना, ये तकलीफ होती है, ये उन महिलाओं को का जो जीवन है वो एक तरह से कहते हैं ना
0: खाली पंसा आ जाता है
1: जीवन में। और वो तकलीफ कहते हैं ना कि जिस पर वो तकलीफ पड़ती है सिर्फ उस वही उस दर्द को समझ सकता है। तो उस उन महिलाओं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उनको कैसे उनकी जो जीवन है उनका उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस उद्देश्य से आज का ये दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, महिमा विधवा होना केवल व्यक्तिगत दुख का ही विषय नहीं है बल्कि कई महिलाओं के लिए ये सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी कारण बन जाता है। वही इसलिए ये दिन उनके अधिकारों और गरिमामय जीवन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आज इस विशेष दिन पर हम जानेंगे कि समाज में विधवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और हम सभी इसमें किस तरह से योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मीनाक्षी जी, एक संवेदनशील और समावेशी समाज वही है जहाँ पर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और अवसर प्राप्त हो। विधवाओं को सहानुभूति नहीं बल्कि समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। और इसके लिए बल्कि सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी शुरू की हैं और ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं, सामाजिक सुरक्षा देती हैं और साथ ही इसमें बहुत सारी योजनाएं और भी इंक्लूड हैं जैसे विधवा पेंशन योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
0: और महिमा विधवाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल आर्थिक सहायता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए क्योंकि इन महिलाओं के लिए हमारी छोटी छोटी सकारात्मक सोच और संवेदनशील व्यवहार भी उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके वैवाहिक जीवन से नहीं होती। हर महिला अपने सपनों, प्रतिभाओं और क्षमताओं के आधार पर समाज में योगदान देने की शक्ति रखती है और ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें उनके संघर्षों को समझना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। होता क्या है कि जनरली जब किसी महिला के ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है तो समाज उस विपत्ति का जिम्मेदार उस महिला को ठहरा देता है।
0: बिल्कुल, आज जब समाज इतना जागरूक हो चुका है तब भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि बहुत पहले के समय से भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विधवा महिलाओं के अधिकारों की बात को बहुत सशक्त रूप से उठाया भी है और हमें विधवाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। हमने पहले भी कहा सामाजिक कार्यक्रमों और निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और भाई सबसे जरूरी कि भेदभाव और रूढ़ियों का हमें विरोध करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही है मीनाक्षी जी, क्योंकि एक सशक्त महिला केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज को वो मजबूत बनाती है। इंटरनेशनल विडोज डे हमें यही संदेश देता है कि हर महिला को गरिमा, सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। और इस बार जो ये थीम है 2026 की वो है इनविजिबल विमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स, यानी कि कैसे नीति निर्माता और समाज द्वारा अक्सर विधवाओं की अनदेखी कर दी जाती है क्योंकि लोग समाज हमारा ये समझता है कि इस जो ये परिस्थिति से ये गुजर रही है इसकी जिम्मेदारी खुद है, बल्कि ऐसा नहीं है। जिस कारण होता क्या है कि उन्हें दर्द और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि पूरी तरह से गलत है और इन्हीं जो चुनौतियों और ये जो ये तकलीफ से गुजरती है इसी को समाज में महिलाओं को एक स्टेटस उनका बरकरार रखने के लिए, एक सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखने के लिए, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए आज ये इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है।

0: और हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ किसी भी महिला को उसके वैवाहिक जो वैवाहिक दर्जा है उसका, उसके कारण उसे भेदभाव का सामना न करना।
1: साथ ही जिस किसी महिला पर ये विपत्ति है कि उसका जीवन साथी उसके जीवन में नहीं है, तो बेचारी महिला का संबोधन नहीं होना चाहिए। हाँ। किसी तरह की दया की उन्हें जरूरत नहीं होती, उन्हें सम्मान की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। तो जहाँ पे हम जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
0: और एक सॉन्ग की अब जरूरत है, प्रोग्राम हम नवा में, तो सुनवाते हैं लिसनर्स को ये सॉन्ग।

0: खोल दे पर बहुत ही अच्छा गाना तुमने सुनवाया, हिचकी फिल्म से था ये गाना। और अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। पूरी दुनिया हमारी भारतीय संस्कृति की मतलब एक मिसाल देती है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है अनोखी है, अद्भुत है महिमा, और ये अनेक बातों को मिलाकर बनती है। इसमें अनेकों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, त्यौहार हैं, उत्सव हैं, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, पहनावा, खान पान, अनेकों रीति रिवाज और लोक परंपराएं
1: और
0: हैं।
1: यही विविधता है मीनाक्षी जी, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता भी कह सकते हैं कि है। और अनेकों विविधताओं को समेटे हुए हमारी संस्कृति में एक रूपता है
0: तभी तो
1: हमारी।
0: अनोखी और अद्भुत है।
1: हाँ बिल्कुल, हमारी संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी हैं उतनी ही जीवंत है हमारी लोक परंपराएं। और
0: भाई
1: लोक
0: हाँ, जो लोक परंपराएं हैं, एक तो इतना अच्छा है टॉपिक है कि दोनों का इसमें बहुत मन है कि अच्छा विषय हमें मिला है आज। भाई लोक परंपराएं वे रीति रिवाज हैं दोस्तों, जो किसी समुदाय या क्षेत्र के लोगों द्वारा अगली पीढ़ी तक बढ़ाई जाती हैं और अगली पीढ़ी द्वारा निभाए जाते हैं। हमारे देश में कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम आज भी निभा रहे हैं। लोकगीत,

0: हैं, लोक नृत्य हैं, मेले, उत्सव, लोक परंपराएं। और महिमा, तुमने देखा होगा कि जब घरों में किसी बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाए जाते हैं, शादी ब्याह का माहौल होता है तो बन्ना
1: बन्ना
0: बन्नी
1: बन्नी
0: गीत,
1: गाए
0: तो ये
1: जाते
0: सब क्या है, लोक
1: हैं
0: परंपराओं में तो आते हैं।
1: बिल्कुल। और लोक कथाओं को आप कैसे भूल सकते
0: बिल्कुल नहीं
1: हैं
0: भूल सकते
1: कि
0: हैं।
1: लोक कथाएं भी हैं कि भाई यहाँ पर रिचुअल्स जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं जो हम पूजा
0: हाँ,
1: पाठ करते
0: तीज
1: हैं
0: त्योहारों
1: कुछ
0: में
1: ऐसे तीज
0: अक्सर,
1: त्योहार हैं
0: हाँ
1: जहाँ पे लोक कथाएं सुनाई जाती हैं पूजा के समय।
0: स्पेशली वो
1: तो
0: पांच कथाएं जो होती हैं वो लोक
1: हाँ
0: कथाएं ही होती हैं।
1: और हम अगर अपने यूपी की बात करें जहाँ लोक कथाओं की बात हुई और लोक गीतों की बात हुई जैसा भी हम लोगों ने बात की तो अपने यूपी की बात जरूर हम करेंगे। तो यूपी की बात करूँ तो नौटंकी यहाँ की एक लोक परंपरा है जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। बिहार की छठ पूजा, गुजरात का गरबा, असम का बिहू नृत्य, राजस्थान का घूमर एक समाज विशेष की संस्कृति की पहचान बनता है कि हम भाई राजस्थान का घूमर बड़ा फेमस है ना, और गुजरात का गरबा तो वर्ल्ड फेमस
0: वैसे
1: है।
0: भारत में अगर आप किसी भी राज्य में जाएं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इस तरह
1: हाँ
0: की रोचक
1: स्पेशलिटी
0: बात
1: मिल ही
0: देखने
1: जाएगी।
0: को जानने को जरूर मिल जाती है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की अब तक कितनी ही चीजें शामिल की जा चुकी हैं। लोक परंपराओं में रामलीला, छाऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कुंभ मेला, 2025 में दीपावली पर्व को भी शामिल किया गया, अभी योगा डे बीता है तो योग भी शामिल किया जा चुका है। लोक परंपराएं और आधुनिक जीवन शैली का तालमेल के बात करें तो ये तभी संभव है जब हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहें।
1: और हम अपनी आधुनिकता वाली जीवन शैली में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अपने तीज त्योहारों को ना मनाएं ऐसा हो नहीं सकता। जो कुछ हमने अपनी पिछली पीढ़ी से सीखा है उसे अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना हमारा ही काम है, हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: और ये फेस्टिवल आते ही इसीलिए हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
0: और कहना है कि अगर हम उन चीज़ों को निभाते हैं तो हम हमारे
1: हम
0: पीछे की
1: अपने
0: पीढ़ी हमें फॉलो करते हुए देख रही होती है तो उनके लिए फिर वो नई चीज़ नहीं रह जाती,
1: नहीं
0: जैसे
1: रहेगा
0: हमने अपनी पिछली पीढ़ी को निभाते हुए देखा है।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिचुअल्स जो पहुंचते हैं ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो एक ऐसे ही सॉन्ग प्ले कर दें।
0: बिल्कुल कर देना चाहिए।

0: जी हाँ, तक थैया थैया जरूर करिए और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आप फिट भी रहेंगे जब आप तक थैया थैया डांस करेंगे, और फिट भी रहेंगे और आपका मन भी खुश हो जाएगा,
1: बिल्कुल खुश।
0: और जहाँ तक हमारी हिवड़ा में नाचे मोर की बात रही, तो अब तो मोर गांव में छतों में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन और वहाँ भी बहुत कम हो गए हैं, और लेकिन बरसात के मौसम में गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है जब मोर वहाँ पर पंख फैलाकर नाचते हैं, तो वाकई में देखने लायक नज़ारा।
1: तो जैसा कि तुमने कहा कि मोर हालांकि कम दिखाई देते हैं, फिलहाल हमारी आकाशवाणी में जब सुबह के मॉर्निंग ट्रांसमिशन में आप आइए तो मोर की आवाज़ आपको सुनाई देती है। अब ये नहीं कह सकते कि कितने मोर हैं यहाँ पे, मैंने कभी गिने नहीं हैं। और गांव की तुम बात करी तो कभी वो दिन थे महिमा के खेतों में जब बारिश का माहौल होता था, तो एक नहीं बहुत सारे मोर होते थे जो हमें दिखते थे, और हम बच्चे स्पेशली उन मोरों को देखने के लिए खेतों की ओर जाया भी करते थे। आज क्यों नहीं है मोर, ये कभी सोचा है? क्योंकि जो हमारी जीवन शैली बदल रही है समय के साथ साथ, शायद इसका भी एक कारण है। मोर क्या बहुत सारे पक्षी हैं जो अब विलुप्तता की कगार पर पहुंच गए हैं। समय के साथ हमारी जो जीवन शैली है इसमें बहुत बदलाव आया है। जब तक टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में एंट्री नहीं ली थी, हमारे काम देखो तब भी होते थे पर उनमें मेहनत बहुत थी और समय ज्यादा लग जाया करता था। जैसे कि अभी कहा कि खेतों की ओर जाते तो पैदल जाया करते थे, कुएं से पानी भरा जाता था, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें मेहनत हुआ करती थी,
0: मेहनत हुआ करती थी। और लेकिन आज उन कामों को जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत आसान कर दिया है, टाइम और मेहनत दोनों की ही बचत कर दी है। पर इसके साथ ही कई सारी चुनौतियां भी हमारे जीवन में आ गई हैं। पहले कभी लोग ज्यादातर पैदल चलते थे, जैसे अभी आपने कहा मीनाक्षी जी, मेहनत करते थे, सिंपल एंड हेल्दी डाइट लेते थे जो घर पर ही तैयार होती थी, और सुकून था सबके पास।
1: बिल्कुल एकदम सिंपल डाइट की तुमने बात की, तो आम घरों में पहले क्या था कि रोटियां हुआ करती थी और शायद उसमें अचार का मसाला या थोड़ा सा तेल नमक बुकनू
0: करके, और वो सुबह नाश्ते में लोग बड़े चाव से खा लेते थे,
1: बहाने से बुकनू पेट में जाती थी बच्चों के, वो पेट उनका मतलब ठीक रहता था। तो ये बहाने थे, वो सिंपल सी डाइट की तुमने बात की, तो सिंपल सी डाइट हुआ करती थी, सेहत हुआ करती थी, समय हुआ करता था। बेशक आज लाइफ में हर तरह की सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन भाग दौड़ देखो ना पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अनियमित हो गया है हमारा खान पान, अनियमित हो गई है हमारी दिनचर्या, हर कोई मानो भाग सा रहा है अपने टारगेट की ओर। सभी के पास एक चीज है जो कॉमन है और वो है स्ट्रेस। मानती हूँ इस बात को?
0: बिल्कुल मानती हूँ। और जो स्ट्रेस है ना वो कई सारी बीमारियों का भी कारण है, एक तो हमारी शारीरिक रूप से, और जो स्ट्रेस होता है उसका हमारे दिमाग पर हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बर्डन सा फील होता है हर समय कि अरे अभी ये काम भी करना है, अभी ये काम भी करना है, और ऐसा सभी लोग जनरली फील करते होंगे। तो और कहीं ना कहीं पहले की लाइफ स्टाइल क्या थी कि बहुत लोगों के अंदर सुकून था, और आज भाग दौड़ की जिंदगी इसलिए भी हो गई है कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है ना। तो और पहले क्या था कि लोगों के पास एक सुकून था कि नहीं मेरे पास जितना है जो है मैं उसी में खुश हूँ,
1: आज संतोष
0: की भावना नहीं है आज, और पहले लोगों में ये चीज थी कि नहीं जो है आरामदायक जिंदगी गुजारनी है, सुकून से जीना है, लेकिन आज वही सुकून हम सबकी लाइफ से गायब हो गया है, और इस भागम भाग में अक्सर हम अपने स्वास्थ्य को भी जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। सुबह का नाश्ता छोड़कर फास्ट फूड पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, जो पैकेट फूड होते हैं उन पर डिपेंड हो गए हैं, टाइम नहीं है।

0: तो पैक्ड जो सामान है वो मंगाया और खा लिया। तो यही शिकवा सभी करते हैं कि भाई अब लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है लेकिन मेरी हेल्थ नहीं ठीक रहती है, स्क्रीन टाइम में लोग ज्यादा समय दे रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है लोगों का। तो इसका अंदाजा भी नहीं लगता है कि हम अपनी लाइफ की भाग दौड़ में अपने हेल्थ को कितना पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
1: समझ नहीं आ रहा है कि टाइम हमारे पास है या नहीं है, है ना? क्योंकि जो 24 घंटे हैं वो सबको एक समान मिलते हैं, तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो इन 24 घंटों को
0: अच्छे
1: बहुत
0: तरह मैनेज
1: अच्छे से
0: करते
1: यूज़
0: हैं।
1: कर लेते हैं, उनका नाम है। और ऐसे लोग भी हैं, एक चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है ये हमारे लोगों के पास है, तो स्ट्रेस हमें हर एक के पास देखने को मिलता है, और जो नहीं देखने को मिलता है तो वो टाइम नहीं मिलता है। कि हर कोई ये कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, दूसरों के लिए तो नहीं ही है और अपने लिए भी समय नहीं है। अधिकांश लोग किसी न किसी तरह की, देखो ना, हेल्थ प्रॉब्लम का भी सामना कर रहे हैं। छोटी उम्र में ही लोगों में थकान, तनाव, मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सिर्फ तन ही नहीं, मन भी परेशान है, पर थोड़ी प्रयास से भी हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। कई ऐसी सकारात्मक अपील हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से की है, उनमें उन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे खाने में तेल को कम करने की अपील उनकी हुई
0: बिल्कुल, फैट
1: है
0: फ्री
1: ना।
0: इंडिया का जो उन्होंने ये चलाया है अभियान,
1: मोटापा,
0: हाँ
1: मोटापे
0: मोटापा,
1: के खिलाफ भी उन्होंने
0: हाँ।
1: अपील की कि भाई इसे कम करिए।
0: तो आप इसके लिए, जैसे अभी 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, तो आप व्यायाम योग करें और कम ऑयली चीजों का यूज करें, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, और सबसे जरूरी कि पॉजिटिव रहें। क्योंकि जो हमारी ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, ये सुविधाओं का तो भरपूर आनंद देती है लेकिन उसके साथ सेहत के संतुलन को भी कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। तो उसको बरकरार रखना हमारा ही काम है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो खुशहाल होंगे।
1: बिल्कुल भाई, हम टेक्नोलॉजी को भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में है और आगे भी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं करना है, एक आम जीवन जीना है। इसी विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं विकास पांडे, आइए सुन लेते हैं।
2: मैं विकास पांडे, रामबाग निवासी, आपके समक्ष मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विषय यह है कि बदलती जीवन शैली में स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले हमें ये सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जो विषय जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, जीवन शैली, हमारा जो जीवन है वो सूर्य के गणनांक के अनुसार ही चलता है। सूर्य कभी ऐसा नहीं होता कि वो शाम को उगे, हर गणनांक उसका एकदम तय है। सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूबता है, उसकी एक जीवन शैली है। यदि मनुष्य भी उस जीवन से, और हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है पूरे सूर्य की दिनचर्या पर ही निर्भर करता है, लेकिन बदलती इस शैली का जो सबसे बड़ा मुख्य रीजन है, व्यक्ति का असंतुलित कार्य, असंतुलित खान पान, जिससे उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का होना पाया जा रहा है। वो बीमारियां मोटापा ही है, हृदय रोग है, मधुमेह है, मानसिक तनाव जैसी गंभीर लाइफ स्टाइल बीमारियों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे मनुष्य पहले सुबह उठता था और अपनी दिनचर्या को पूरा करते हुए समय से खाना खाकर अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर कार्य करता था, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारियां मानव जीवन में नहीं थी। आज व्यक्ति समय से ना उठकर उसका उसका मुख्य रीजन उसका बढ़ता कार्य, जो व्यक्ति को उसकी ऊर्जा को असंतुलित कर देता है, और असंतुलित होने के कारण उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, दिन पर दिन व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। तनाव से ग्रसित होने का रीजन ना कि व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार है, स्वयं का व्यवहार

उसका व्यवहार का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी आंतरिक जो क्षमता है उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह विक्षिप्त होती चली आ रही है, जिससे व्यक्ति में उसके रक्त स्त्राव में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है। धन्यवाद। मैं विकास पांडे,

0: या खाली हॉल में अनुभव करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रतिध्वनि मतलब इको की।
1: बिल्कुल, मैंने गेस कर लिया था कि यही बात तुम करने वाली हो। भाई मुझे याद है जब मैं पहाड़ी इलाकों में कभी घूमने गई थी, या कभी जैसे तुमने हॉल का जिक्र किया, तो कभी किसी खाली बड़े कमरे में भी ऐसा मैंने किया है, अपना नाम पुकारा और फिर कुछ पलों के बाद जब वही नाम वापस सुनाई देता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है।
0: और जो जिन बच्चे हैं जो पहली बार ऐसे अपनी रिवर्स वॉइस को सुनते हैं तो बड़ा उनको आश्चर्य भी होता है, बड़े खुश होते हैं। तो मीनाक्षी जी, जैसे आपने अनुभव किया है, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जब हमारी आवाज किसी दूर स्थित हार्ड सरफेस से टकराकर वापस लौटती है और हमें दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है तो उसे ही प्रतिध्वनि यानी कि इको कहते हैं।
1: बिल्कुल, हम आम भाषा में प्रतिध्वनि को डिफाइन कर रहे हैं। अब जानते हैं कि प्रतिध्वनि की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है महिमा।
0: तो प्रतिध्वनि यानी इको वो ध्वनि है जो किसी बाधा या सतह से परावर्तित होकर कुछ समय बाद हमें फिर से सुनाई देती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब ध्वनि तरंगे किसी बड़ी और कठोर वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं और मूल ध्वनि से अलग सुनाई देती हैं तो उसे ही हम इको कहते हैं।
1: गूंज के साथ आती है क्योंकि
0: गूंज अलग चीज होगी। गूंज में क्या होता है कि रिवर्स होके हमें हमारी वॉइस नहीं सुनाई देती है, वो उसी में मिक्स हो जाती है। मूल आवाज में वो जो हमारी जाती है आवाज, वो मूल आवाज में मिक्स हो जाती है, हमें रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिलती है।
1: प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है। जैसे प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है, वैसे ही ध्वनि भी किसी कठोर सतह से परावर्तित हो सकती है। तो अब समझते हैं कि प्रतिध्वनि बनती कैसे है।
0: तो इसका आंसर ये है कि जब हम बोलते हैं, जैसे ताली बजाते हैं या कोई हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि तरंगों के रूप में चारों ओर ये फैलती है। और अगर रास्ते में कोई बड़ी और कठोर सतह जैसे पहाड़, चट्टान, इमारत या दीवार आ जाए तो ध्वनि तरंगे उससे टकराकर वापस लौट आती हैं, और जब लौटकर आने वाली ध्वनि तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं और मूल ध्वनि से अलग महसूस होती हैं तब हम उसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं जो हमें सुनाई देता है। लेकिन मीनाक्षी जी, अब लिसनर्स को ये भी बताते हैं कि प्रतिध्वनि क्या हमें हर जगह सुनाई देती है या ऐसा नहीं है।
1: तो भाई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इको सुनाई देने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि परावर्तक सतह पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए। हम इंसानों के कान लगभग 0.1 सेकेंड तक किसी ध्वनि का प्रभाव बनाए रखते हैं, और यदि परावर्तित ध्वनि 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा समय बाद लौटे तभी वो अलग से सुनाई देती है।
0: हाँ, क्योंकि जो वायु है उसमें ध्वनि की गति लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग 17 मीटर या उससे ज्यादा दूरी पर होनी चाहिए। इसके अलावा परावर्तक सतह बड़ी और कठोर होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए, ताकि जो हमारी आवाज है वो अच्छी तरह से परावर्तित हो सके। और इसके अलावा ध्वनि पर्याप्त तेज होनी चाहिए ताकि परावर्तन के बाद भी उसे स्पष्ट सुना जा सके। और इको केवल साइंस की बुक्स तक ही सीमित नहीं मीनाक्षी जी, हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं।
1: बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे किसी बड़ी खाली इमारत, सुरंग या विशाल सभागार में भी प्रतिध्वनि का अनुभव होता है। कई बार कुएं में झांककर जोर से बोलने पर भी आवाज वापस सुनाई देती है। इको के यूज की बात बताओगी।
0: बिल्कुल, इको का यूज है कि जैसे समुद्र की जो हम गहराई मापते हैं तो उसको मापने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं और लौटने में लगे समय के आधार पर समुद्र की गहराई का पता किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और इसके अलावा चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जो जीव हैं वो भी इको का यूज करके अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाते हैं। और इसे जो है हम इको लोकेशन कहते हैं। और मेडिकल साइंस में जो अगर इको की बात करूं तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी भी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है। और मीनाक्षी जी, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जैसे घाटियां हैं, गुफाएं हैं, पहाड़ी एरियाज हैं जो अपने अद्भुत प्रतिध्वनि के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, तो जो घूमने वाले लोग हैं, जो घूमना चाहते हैं, तो इन जगहों पर जा सकते हैं। आज हमने प्रतिध्वनि यानी इको के बारे में जाना, और प्रतिध्वनि हमें यही सिखाती है कि साइंस हमारे आसपास की साधारण घटनाओं में भी छिपी होती है। बस जरूरत है उसे समझने की और जानने की।

0: 11:46 और 45 सेकंड्स हो रहे हैं। प्रोग्राम हमनवा चल रहा है 102.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर। कुछ विषय हम शेयर कर चुके हैं अपने साथियों के संग और अब आते हैं अपने अगले विषय पर। आज हम भारत के प्रख्यात शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।
1: हाँ, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और वर्ष 1953 में 23 जून यानी कि आज के दिन उनका निधन हुआ और तब से ये दिन उनके बलिदान और योगदान की को याद करने का अवसर बन गया है। और एक शिक्षाविद, दूरदर्शी नेता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में उनका योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा।
0: बिल्कुल, इन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय राजनीति और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। डॉक्टर मुखर्जी कम उम्र में ही शिक्षा जगत में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके थे। देश हित के मुद्दों पर उनकी स्पष्ट सोच थी और दृढ़ नेतृत्व ने उन्हें जन जन के बीच सम्मान दिलाया।
1: डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि राष्ट्र की शक्ति उसकी एकता, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों में निहित है। डॉक्टर मुखर्जी भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। इन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध करते हुए एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे इसका नारा दिया था। और जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटा तो ऐसा लगा कि मानो डॉक्टर मुखर्जी का सपना साकार हो गया। इसके अलावा अगर मैं इनकी उपलब्धियों की बात करूं तो 1941 और 1942 के दौरान वो बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं और एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं उनको।

0: अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसे अभी हमने रहस्य बना रखा था, नहीं बताया था कि आज क्या बनने वाला है, तो बता दे क्या बनने वाला है।
1: हाँ, क्योंकि 11:53 और 45 सेकंड हो रहे हैं, तो अब हम आ गए हैं अपने रेसिपी सेगमेंट के पास, तो बताना जरूरी है कि आज की रेसिपी क्या है।
0: कौन बताएगा, मैं बताऊँ या तुम बताओ?
1: नहीं, आप ही बताइए।
0: तो आज बन रहा है,
1: क्योंकि कॉन्फिडेंशियल भी आप ही ने रखा था।
0: और ये ऐसी चीज भी है जिसमें जिस दो महिलाएं होती तो अक्सर रहता है कि कौन इसे काटेगा, ये एक मुद्दा रहता है। तो कुछ इसी तरह का हमारा तुम्हारा भाव भी चल रहा है। आज बन रहा है चौलाई का साग। चौलाई का साग लगभग 500 ग्राम चाहिए होगा इसके लिए। सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, लहसुन 5 या 7 कलियां, 2 या 3 हरी कटी हुई मिर्च, जीरा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, 2 या 3 साबुत लाल मिर्च। साग को 3 या 4 पानी से धोकर अच्छी तरह पानी निकल जाने के बाद बारीक काट लेना है। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालकर चटका लें। 1 चुटकी हींग डालें। अब बारीक कटा लहसुन और हरी मिर्च डालें। लहसुन के सुनहरा होने तक इसे भूनें। अब इसमें बारीक कटे चौलाई के पत्ते डालें। कुछ देर के अंतराल पर बार बार इन्हें चलाते रहें। जब पत्ते पक कर कुछ कम हो जाएं, यानी दब जाएं, तो नमक डालकर मिलाकर ढक कर पकाएं। आँच धीमी रखें, लगभग 10 मिनट तक इसे पकने दें। 10 मिनट में पक जाते हैं। जब साग गल जाए और पानी छोड़ दे तो ढक्कन हटाकर इसे तेज आँच पर तब तक चलाएं जब तक साग का सारा पानी सूख न जाए। आखिर में जब सारा पानी सूख जाए तो कलछी से इसे मैश कर दें। जब पत्ते अच्छे से पक जाते हैं तो उनमें एक चमक व महक दोनों ही आ जाती है। जब ऐसी रंगत चौलाई के साग की हो जाए तो समझिए कि ये अब बनकर तैयार है।
1: और इस चौलाई के फायदे भी बहुत हैं। चौलाई जो है ये गठिया, रक्तचाप और हृदय रोग में फायदा करती है। पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करती है, यानी कि हमारे पेट की दोस्त है, और कब्ज ठीक करती है और बाल गिरने की समस्या का भी समाधान करती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, तो जरूर चौलाई इसमें बहुत आ रही है। और सब्जियों की
0: कोशिश भी हमारी यही रहती है कि हम सीजनल चीजों को लेकर आए कि इनसे क्या बन सकता है, तो शेयर कर लेते हैं।
1: और टेस्टी भी बहुत होती है। आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। फिलहाल तो आप एंजॉय करिए ये सॉन्ग।

0: घड़ी इशारा कर रही महिमा की अब प्रोग्राम हम नवा से हमें विदा लेने का समय हो गया है। तो आज के प्रोग्राम हम नवा से आरजे मीनाक्षी और
1: आरजे महिमा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। महान राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज सुबह लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए योग्य इच्छुक तीर्थयात्रियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में जारी

अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन खिड़की 22 जून से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। इच्छुक तीर्थयात्री हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर हज सुविधा ऐप के जरिए मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में कुल रहा डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें अंतिम रूप से चुने गए प्रत्येक तीर्थयात्री को 10 अगस्त 2026 या उससे पहले 1,52,300 रुपए की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। आवेदकों को केवल स्कैन की गई कॉपियां अपलोड करने की सलाह दी गई है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुई अग्निकांड की घटना के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक जयनारायण यादव ने पंजीकृत कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अमान्य कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराने को कहा है। जिले में 200 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 23 जून को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। बंदी में अब सिर्फ एक सप्ताह शेष रह जाने से यहां सैलानियों की आमद बढ़ रही है। वहीं बाघ व अन्य वन्यजीवों की साइटिंग भी खूब हो रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खूबसूरत बाघ सैलानियों को काफी पसंद आ रहे हैं। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: स्टे ट्यून टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुनिए
5: कहिए कहिए,
4: सुनिए सुनिए
5: कहिए कहिए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: और दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रोग्राम शत्रुपा, और जिसमें आज है मंगलवार, और मंगलवार को हम स्टाइल फैशन की बात करते हैं। तो आज बात होने वाली है कि ढीले ढाले जो कपड़े हैं उनका ग्लैमर और क्यों पहने और कैसे स्टाइल करें। जी हाँ, शालिनी है आपके साथ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैशन ट्रेंड की जो सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है बल्कि आराम, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जरूरतों से भी जुड़ा है। जी हाँ, ढीले ढाले कपड़े पहले इन्हें केवल सुविधा के लिए पहना जाता था, लेकिन आज ये स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं। तो आइए समझाते हैं कि लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं और इन्हें पहनते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक सवाल आपसे भी कि आपके वार्डरोब में, अलमीरा में कोई ऐसा कपड़ा है, ऐसी ड्रेस है जिसे आप बार बार पहनते हैं क्योंकि वो आरामदायक है, उसके बारे में हमें ईमेल करें fmakashwani@gmail.com पर और हमसे जुड़े रहें। शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में।
1: This is something

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

12:26 और 40 सेकंड हो चला है प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ लेकर आज कपड़ों के ग्लैमर की बात। जी हाँ, ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं ना वो शरीर को खुलकर सांस लेने का मौका देते हैं, खासकर जब गर्मी और उमस वाले मौसम होते हैं तो ये शरीर को ज्यादा आरामदायक महसूस कराते हैं। पूरा दिन ऑफिस में, घर या बाहर काम करने वालों लोगों के लिए ये कपड़े बहुत आसान और हल्के लगते हैं। और दोस्तों, वैसे भी ना फैशन तब अच्छा लगता है जब उसमें सहजता हो, और आज का फैशन कहता है कि खुद को बदलने की नहीं, खुद को अपनाने की जरूरत है। जो पहनकर आप सहज महसूस करें वही आपकी स्टाइल है। जी हाँ,

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: जनाब
4: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं? और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

चुन सकता है। और इसका जो एम होता है ना, वो शरीर को छिपाना नहीं बल्कि सहजता और आत्मविश्वास देना है। तभी तो फैशन एक्सपर्ट का भी मानना है कि ग्लैमर का मतलब भारी कपड़े नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। लूज फैशन आपको मूवमेंट देता है और पर्सनालिटी को खुलकर सामने लाता है, है ना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, रिटर्न में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:44 और 23 सेकंड का वक्त हुआ है। प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ, लेकर आज फैशन की बात। दोस्तों मानसून और गर्मी के मौसम में बहुत टाइट कपड़े हमें कंफर्टेबल नहीं लगते हैं ना, कॉटन है, लिनन है, और हल्के कपड़े शरीर को आराम देते हैं, इसीलिए ढीले कपड़ों का ट्रेंड मौसम के अनुसार भी काफी व्यावहारिक माना जाता है ना। आज का फैशन का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, अच्छा महसूस। प्लाजो, वाइट पैंट्स और फ्लोवी ड्रेसेस, ये सारी चीजें आजकल दिखाई देती हैं सबसे ज्यादा, और आराम और स्टाइल एक साथ हो सकते हैं क्यों नहीं, जब इस तरह के फैशन को हम ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अगर आप ऊपर का कपड़ा बहुत ढीला पहन रहे हैं तो नीचे थोड़ा स्ट्रक्चर रखें, और अगर नीचे ढीला है तो ऊपर का एकदम साधारण रखें, इससे लुक जो है ना बैलेंस्ड रहता है। और बहुत भारी या बहुत ज़्यादा ढीला कपड़ा लुक बिगाड़ सकता है, इसीलिए कहते हैं मौसम के हिसाब से हल्के और अच्छा फैब्रिक चुने, है ना।

दोस्तों 12:48 और 54 सेकंड हो चले और धीरे धीरे ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा वाइंड अप। लेकिन अभी भी कई सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, आपको बतानी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ढीले ढाले कपड़ों के ग्लैमर की। तो बता दें दोस्तों कि हल्के तभी अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े प्रिंट की जगह बैलेंस डिजाइन को चूज करें और आरामदायक कपड़ों के साथ साथ आप साफ सुथरे जूते या सैंडल पूरे लुक को आपके बेहतर बना सकता है। कोई भी फैशन तभी अच्छा लगता है जब पहनने वाला उसमें सहज महसूस करे। ट्रेंड से ज्यादा अपनी सुविधा और पसंद को इम्पोर्टेंस दीजिए और यही जरूरी है ना दोस्तों। तभी तो कहते हैं कि हम फैशन से नहीं, फैशन हमसे है, क्यों?

दोस्तों 12:53 और 50 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी इस प्रोग्राम को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ढीले ढाले कपड़े जो है ना वो सिर्फ ग्लैमर सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आराम आत्मविश्वास और अपनी पहचान को सहज तरीके से अपनाने का एक तरीका है। जी हाँ, और आज की बात बस इतनी ही कि ढीले ढाले कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक एहसास है आराम का, आत्मविश्वास का और अपनेपन का। और याद रखिए, फैशन वही जो आपको अच्छा महसूस कराए और जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो बस इसी के साथ शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करती है वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सी कौन सा प्रोग्राम? ओठों पे तेरी बात। और इसमें आज क्या हम खास बात करेंगे ये हम आपको उसी प्रोग्राम में बताएंगे। तो रेडी हो जाइए ईमेल्स करने के लिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। महान राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज वन विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को एक पेड़ माँ के नाम का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और राज्य को हरित बनाना है। इस अवसर पर आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को एकमात्र विकल्प बताते हुए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने और संकल्प लेने का आह्वान किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के थाना सेक्टर 126 के रायपुर गांव में बने एक लेबर कैंप में आज सुबह आग लग गई। इस कैंप में करीब 60 मजदूर रह रहे थे। दमकल विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग आग में फंस गए हैं। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हापुड़ जिले में आज थाना देहात क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस से उतर रहे यात्रियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक बच्ची और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तिगरी गंगा धाम और ब्रिजघाट में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से 25 जून सुबह 8 बजे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह रूट डायवर्जन गंगा दशहरा पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परामर्श के अनुसार अमरनाथ यात्रा के काफिले की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए नवयुग सुरंग से सामान्य यातायात पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सिरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 1:04 और 48 सेकंड हो चले हैं। प्रोग्राम होठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें शालिनी है आपके साथ और आज हम बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर के रख देगा। वो कौन सा मुद्दा है बताइए तो जरा। अक्सर हम सभी लोग कहते हैं कि भाई चलता है, क्या करें, जैसा चल रहा है चलने दे, क्या किया जा सकता है। तो जो ये हमारा रवैया है, किसी दिन हमारे अपनों पर भारी पड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या यही रवैया हमेशा हमेशा रखना चाहिए। तो बस इसी बात पर आप हमें ईमेल्स करें। हमारा ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। और बस चलता है इस शब्द को आज कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में बदलने की।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाय वकू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अजा उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए केजीएमयू का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाय वकू का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए केजीएमयू का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात की जाएगी। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, SP सरबरा अखिलेश यादव, BSP सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रूपये और जख्मियों को 50-50 हजार रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार की इतला है कि कुल 65 अवार्ड आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ और रियासत को सब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 अजला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मंसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया गोरखपुर संतकबीरनगर कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
6: सात हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
8: FM रेनबो के संग।
9: करियर पर है ध्यान,
10: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
9: पॉजिटिव है फैशन,
10: क्रिएटिव है पैशन,
9: टेक्नोलॉजी में रुचि,
10: बने पर्सनालिटी ऊंची,
9: फॉलो करें ट्रेंड्स,
10: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
9: ओनली ऑन यूथ वेव।
10: यूथ की बात यूथ के साथ
9: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
10: धड़कन लखनऊ की।

भी कुछ कुछ ऐसे मेल्स आए हैं हमारे पास में कि आप थोड़ा सा और डिटेल में समझाएं इसे। तो हम आपको बता दें कि कई बार हम जानते हैं कि इस चीज में खतरा है, ये नियम के अगेंस्ट है, इस चीज को करने से कभी ना कभी हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें भारी जोखिम में हम पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि हाँ चलता है, चलने दो। तो इस बात पर हमने इस टॉपिक को लिया था, लेकिन अब आते हैं हम सीधी बात पर कि जो ये गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, सभी को पता है, सभी लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको हम चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। हाँ, कुछ घरों में जरूरी जरूर है कि जब हम ये चलाते हैं तो हम इसे बंद करने का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमसे वो जगह जुड़ी नहीं होती है, यानी कि उस जगह का बिजली का बिल हमें नहीं देना होता है ना, तो हम इस तरह की चीजें चलते रहने देते, ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है या हमें नुकसान पहुंच सकता है, और क्या यहाँ पर फायर अलार्म की सुविधा है, हमें पता चल पाएगा, या हमने जो ये फायर आग बुझाने के सिलेंडर्स रखे होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी ट्रेनिंग ली है या नहीं। लेकिन तब कहते हैं कि सब चलता रहता है, तो बस इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपसे राय जानना चाहते हैं, तो हमें मेल जरूर करें fmakashwani@gmail.com पे। और एमन नवाब जी, जिन्होंने संजीला से हमें मेल किया है, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और एक मेल रामराज का भी आया है, जिला रायबरेली से है, पहाड़ीपुर से, आप भी समझ गए होंगे कि हमारी बात क्या है। और सुधाकर राधे जाधव जी जाफराबाद से हमें मेल कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस विषय पर अपनी क्रिया जरूर दें।

1:21 और 33 सेकंड हो चले हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका था बहुत देर पहले ही, जिसके दो गाने भी आप सुन चुके हैं प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात। और हमने ये पूछा था इस प्रोग्राम में आज कि चलता है ये जो रवैया है, ये हमारे अपनों पर क्या भारी पड़ सकता है। तो शायद कई सारे लोगों को नहीं समझ में आया तभी

दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, और जिसमें सतीश अनेजा जी का मेल आ चुका है। चंडीगढ़ से ये हमें मेल करते हैं और इन्होंने लिखा है कि कोई भी जब हम काम करें तो उसे अपने विवेक से सूझबूझ करके करें तो सही रहेगा। कई बार हम संदेह पूर्वक वाला काम बिना परवाह किए कर देते हैं, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। बात तो हम किसी का मशविरा भी ले सकते हैं, फिर तो दो दिमाग की एक राय हो जाती है और काम हमारी सोच से भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब हमें किसी चीज में समझ में नहीं आ रहा हो कि हाँ ये ठीक है, क्या चलता है या चलने देना चाहिए, फिर वही शब्द यहाँ पर आ गया, तो हमें एक दो लोगों की राय जरूर लेनी देनी चाहिए। कुछ समय के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भुला देते हैं कि अरे चले जाने दो, क्या कभी ऐसा भी होगा। लेकिन जब मुसीबत आती है ना दोस्तों, कहते हैं ना कि वो बता के नहीं आती, अगर बता दे तो फिर बात ही क्या हो। और उसके बाद जब चीजें हो चुकी होती हैं, हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता। और ये मेल हमारे पास में जाफराबाद से आ चुका है, सुधाकर यादव जी का भी है। 15 जून से स्कूल चालू हुआ है और आपने बच्चों को स्कूल में डालते वक्त कौन कौन सी खबर लेते हैं, स्कूल में लिफ्ट की सुविधा है या नहीं, स्कूल की गैलरी में जाली बिछी है या नहीं, और शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो ऐसे में दुर्घटना से बचने के वास्ते कोई सुविधा है कि नहीं, ये सब ध्यान रखते हुए ही बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, इन तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, वो किसी से बताने से नहीं आनी चाहिए, ये तो खुद की बात है। जब हम अपना घर बना रहे होते हैं तो कई सारी चीजें सोचते हैं कि इस कमरे में हवा इस तरफ से आएगी, इस कमरे का दरवाजा इस तरफ रखेंगे, वास्तु शास्त्र ये कहता है, लेकिन उस वक्त हम अपनी सावधानी को, होने वाले कल की कोई मुसीबत को पहले से क्यों नहीं सोचते हैं और क्यों उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज ये ध्यान का विषय बन चुका है।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे प्रोग्राम होठो पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। और मेल आ चुका है चंद्रमोहन मिश्र नौरंगपुर लखीमपुर खीरी से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आज मैं बिजली के जिम्मेदार उपयोग के प्रति एक गंभीर चिंता साझा करना चाहता हूँ।

अक्सर देखा गया है कि जब बिजली मुफ्त या रियायत दर पर उपलब्ध होती है तो उपयोगिता विद्युत उपकरणों को यह केवल बिजली की बर्बादी ही नहीं बल्कि एक बड़ा सुरक्षा जोखिम भी है। उपकरणों के लगातार चलने से ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है जिससे अनहोनी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि बिजली की उपलब्धता के साथ साथ इसके सुरक्षित उपयोग और उपकरणों के रख रखाव के बारे में भी नागरिकों को जागरूक किया जाए। उम्मीद है आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवश्य कदम उठाएंगे और सभी लोग सजग हैं और जागरूक हैं और इस तरफ सभी का ध्यान केंद्रित हो रहा है और एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इसके प्रति जिम्मेदार होंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। और रामेश्वर कठेरिया जी का भी मेल मुंगिसापुर कानपुर देहात सुन रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। विनीत कुमार का भी मेल आया हुआ है, रामगढ़ चीनी मिल जिला सापुर से हमें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि धूप बहुत हो रही है, गर्मी गंभीर हो रही है और इसे हमारे भाई बहन दिन में 4-5 बार चेहरे को धोएं और पानी पर्याप्त मात्रा में जितना पी सके उतना पिए और पानी की कमी मत होने दे शरीर में और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें, काम मत करवाएं। बहुत अच्छी बात लिखी है, शायद आप हमारा प्रोग्राम कह रहे हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि और जो लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस आज के गंभीर विषय पर हमसे जरूर बात करेंगे, अपनी बात हमसे जरूर साझा करेंगे कि हम जिस वक्त काम कर रहे होते हैं उस समय छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। और वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना दोस्तों, भविष्य में बहुत बड़ी आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, ये जानते हुए भी हम ऐसा क्यों करते हैं और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। और ये आजाद अली अनवर जी ने गाजीपुर से मैसेज किया है, लेकिन अभी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए और हमसे अपनी बातें साझा कीजिए। और जी हाँ, सुधाकर राधे जाधव जी, आपने बहुत सही बात लिखी है। ये अभी कल का ही हादसा है, लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई और उस आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और कई सारे घरों के चिराग बुझ गए। मतलब आप सोचिए क्या उन पर बीत रही होगी। तो बस इसीलिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये उसी वक्त सोचना चाहिए, उसी से रिलेटेड आज हम थोड़ी सी बात आप सभी से साझा कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक का और उसके बाद वापस आएंगे अपनी बात पर।

0: ही बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम हो चुपे तेरी बात में, शालिनी आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। और देखिए प्रवीण जी का मेल का है और ये इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है कि मेंटेनेंस ना होने पर बिजली के तार और उपकरण सेफ्टी मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं रहते, इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक जरूरी है। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने और एम एन नवाब ने बहुत अच्छी बात लिखी है और पूरी बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन्होंने लिखा है कि अगर हमें कुछ ना पता हो तो अपना ईगो साइड में रखकर दूसरों से पूछ लेना चाहिए, पूछ लेने से अपना और दूसरों का नुकसान होने से बच सकता है। मुझे अगर कुछ नहीं पता होता है, 1% भी डाउट होता है तो मैं पूछ कर ही करती हूँ, जैसे गैस सिलेंडर की बात हो या लाइट की। पहले मुझे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर लगाना नहीं आता था, मैंने सीखा और गैस सिलेंडर भी लगाने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, तभी लगाना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात और भी है, कभी भी फ्रिज अपना आप साफ कर रहे हैं तो उसका प्लग निकाल के ही साफ करना चाहिए और सूखने के बाद ही प्लग को वापस लगाना चाहिए। और कूलर में भी इसी तरह से काम करना चाहिए, अगर आप पानी डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कूलर का जो इलेक्ट्रॉनिक बटन है वो ओपन ना हो और कूलर का प्लग लगाना हो। और इसी तरह से गैस सिलेंडर बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। थैंक यू अमन, बहुत अच्छी बात लिखी है। और सौरभ उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि जो ये चीजें ओपन करके लोग छोड़ देते हैं, एसी, फ्रिज, पंखा और सारी चीजें, और अगर हम ये करते हैं तो हमारी मम्मी हमें बहुत डांटती हैं इस तरह करने से, चाहे वो घर का हो या दूसरों का, नुकसान तो नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात आपकी मम्मी ने आपको समझाई है और यही बात हमें बहुत अच्छे से सबको समझाना है और समझना भी चाहिए। और एक मेल हमारे बीच में और आ चुका है, अंजू जी का मेल है। लोगों को एक बात नहीं समझ में आती है कि ऐसे अप्लायंस नहीं यूज करना चाहिए जिसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। कल इंसिडेंट्स के लिए ये बात चाहे कोचिंग सेंटर की हो, स्कूल की हो, घर की हो, हर जगह एसी सबको चाहिए, जिसकी वजह से गर्मियों में ऐसी दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। आज से 10-12 साल पहले ऐसी दुर्घटनाएं ना होने के बराबर थी जो आज के जेठ में बढ़ गई हैं। और बिल बढ़े इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, बट एसी लगवाना मतलब सबके लिए अच्छी बात नहीं होती है। और रही बात समझने की, तो लोगों में ऐसी चीजों का इस्तेमाल सही से आना चाहिए, कब कितना इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने दोस्तों। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

दोस्तों 1:54 हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम को यहीं पर करना होगा वाइंड अप। लेकिन आपको बता दें कि पिंकू सोनी जी का भी मेल हमारे बीच में आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि जब हमें कोई काम समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी से पूछकर जरूर करना चाहिए, इसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और कई लोगों के नाम लिखे हैं, कुलदीप है और आकाश, पिंकी और गुलाबसा और सारी लिसनर्स की बात करी है इन्होंने। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप, इस उम्मीद के साथ कि जो ये चलता है ना शब्द आपका चला गया होगा और समय रहते ही अपनी चीजों को जाने समझे, परखें, शर्म ना करें, झिझक ना करें, जरा से फायदे के लिए लंबे समय तक किसी काम को ना टालें। और समय रहते अगर हम जागरूक हो जाएंगे, अपने काम को कर लेंगे, तो इतने बड़े बड़े हादसे होने से टल जाएंगे और लोगों के घरों के जो चिराग बुझ गए हैं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीत रही है वही केवल बता सकता है, हम केवल उन्हें दिलासा दे सकते हैं, लेकिन जो घर से चले गए वो वापस आ सकते हैं कभी नहीं, है ना। तो बस जागरूक हो जाइए और इन सारी चीजों के लिए लोगों को बताइए, समझाइए कैसे भविष्य में दुर्घटनाएं ना हों।

0: Mumbai City, Mumbai suburbs and the Ghat regions of Pune, Raigad and Ratnagiri over the next few hours. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
0: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक

0: और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है,
3: मोटी चिकन मामूली का काम, तो

0: लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
1: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
2: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
2: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
3: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
2: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
2: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
3: नाफेड ने एक प्रकार से Nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भाई इतने प्यारे प्यारे से ट्रैक आज पसंद किए गए हैं कि हम एकदम ओल्ड गोल्ड हुए जा रहे हैं और सदाबहार नगमे के बाद एक आप तक पहुंचा रहे हैं। और श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा ममता के साथ में मेल आया हुआ है और नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाजो कोयल बाजार पानीपत से भी हमें मेल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये नारायण गायकवाड़ दयानंद के साथ में नांदेड़ महाराष्ट्र से मेल हमें कर रहे हैं। सुधाकर आदि जाधव जी का प्रशांत संचित के साथ में जाफराबाद से मेल आया है और भी ढेर सारे नाम इन्होंने अपनी ईमेल्स में लिख कर रखे हैं। और ये किसका मेल आया है, चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी जी का है, प्रमिला और नेहा है इनके साथ में। संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है, ज्योति मन्नत भरत के साथ जालंधर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है, मनोज बंशल जी का मेल है, हांसी से ये हमें मेल कर रहे हैं। सुरेश नारंग जी का आशा के साथ में है और इन्होंने सहारनपुर से हमें मेल किया हुआ है। हीरामणि वर्मा पारस मणि के साथ भाटापारा से हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल आ चुका है, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता जी का मेल आया हुआ है। और कई सारी ईमेल्स बार बार और बार बार आते ही जा रहे हैं और जबकि उनका मेल शामिल भी कर लिया गया है। आप खुद समझदार हैं, हमें बार बार मेल ना करें। और हनुमान सिंधे संगीता के साथ में सांगली से मेल हमें कर रहे हैं। और किसका मेल है देख लेते हैं। अच्छा चलिए मेल नहीं देखते हैं, अब ये गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं, प्यारा से ट्रैक है, सुनिए एंजॉय कीजिए।

2:37 हो चले, ढेर सारे ईमेल्स हमने आप तक पहुंचा दिए हैं और गाने भी एक के बाद एक जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गाना प्ले हो तो हमें मेल कर दीजिए फटाफट। सोमदत्त जी का मेल आ चुका है पटियाला पंजाब से, ये हमें मेल कर रहे हैं और ज्योति इनके साथ में है। और वाणिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली का भी मेल आया हुआ है और

गगन दीप थानी जी का तृप्ता के साथ में नवाशहर पंजाब से मेल आया है, और ये राजेश वर्मा जी का मेल आया हुआ है हकीकतपुरा मऊ से। मुन्ना भाई हैं, पिंकी हैं, और कई लोगों का साथ में मेल है। पंकज शर्मा जी का भी मेल आ चुका है, और संदीप गुंगलानी हैं इनके साथ में, और करनाल से इन्होंने हमें मेल किया है। और नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी का मेल है। सुदर्शन साहब पल्लवी के साथ नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज के साथ झारखंड से मेल कर रहे हैं, और हितेंद्र दास जी का भी मेल आसाम से आ गया है। थैंक यू मेल करने के लिए, क्योंकि आप वहां हमें ऐप के जरिए सुन रहे होंगे, और इतना प्यार हमेशा हमारा बना रहे। और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम के साथ में हमें मेल कर रहे हैं। महेंद्र मोदी जी का मेल ठाकुर साहब के का है, और रामगढ़ कैंट से इन्होंने हमें मेल किया है। नवी हसन जी का भी मेल शाहनवाज के साथ में दरवाजा एटा से आ चुका है, और मेल नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी के साथ में आया हुआ है। और जावेद अख्तर जी का भी मेल मुबारकपुर आजमगढ़ से आ चुका है, और समशुल कमर राही भी हैं इनके साथ में। और जयवीर सिंह ठाकुर जी का अनिल शर्मा कैथल हरियाणा से हमें मेल कर रहे हैं। सैफ अंसारी जी का भी मेल लखीमपुर से आ गया है, और भागवत वर्मा शांति देवी के साथ दतरेंगी से ये हमें मेल कर रहे हैं। दिनेश वर्मा का रिंगणी छत्तीसगढ़ से करुणा के साथ ईमेल आया है। सिद्धार्थ गोटाने अर्चना ताई राहुल नगर अमरावती से हमें मेल कर रहे हैं, और राजेश कुमार जजूरिया जी का भी मेल आया हुआ है, और ये हमें कहां से मलोट से मेल कर रहे हैं गीता रानी के साथ में। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

समीर के साथ में अम्बेडकर नगर ऐशबाग से ये हमें मेल कर रहे हैं। निसार अली जी का भी तेली वाला उत्तराखंड से नौसाद के साथ में मेल आया है और सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है और ये हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, थैंक यू। और ये संतोष भाकरे और सुनैना सुकन्या के साथ में महाराष्ट्र से मेल हमें कर रहे हैं और राजकुमार टूडी का पुष्पेंद्र प्रमोद के साथ फ्रांस हिसार से मेल आया है और मुंगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया उमाकांत कमलेश के साथ में हमें मेल कर रहे हैं। पूजा पाल जी का भी मेल आया हुआ है सीतापुर से बिठौली से ये हमें मेल कर रहे हैं और मिर्जापुर भी इन्होंने लिखा हुआ है। दिलावर खान जी का मेल हसीना बानो एलिजा नवाब के साथ रघुबीर नगर दिल्ली से मेल आया हुआ है और कमलेश मुकुल सचिन का न्यू दिल्ली से मेल आ चुका है। अजमत अली जी का भी मेल आया है और इन्होंने कहां से मेल किया है ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। कमलकांत गुप्ता जी का दीपा रिमझिम के साथ लखनऊ से ये हमें अच्छा आज लखनऊ से मेल कर रहे हैं, आप लाइन में लगे हैं लखनऊ के पिपरिया से, अच्छा चलिए। और किसका मेल आया है और ढेर सारी मेल्स और भी हैं, फटाफट आप तक पहुंचाते हैं। और शाहजी बोरखे जी का भी मेल है नंदा हनुमान के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से ये हमें मेल करते हैं और रेगुलर ही इनका मेल आता रहता है। और अब आ रही है इस प्यारे से ट्रैक की।

इस गाने में बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम हमारी जिंदगी पर एकदम फिट बैठती है ना दोस्तों। नवी हसन जी, आप नाराज हो रहे हैं, आपका मेल तो बहुत पहले ही पढ़ा जा चुका है कि दरवाजा 88 नवी हसन शाहनाज ने हमें मेल किया हुआ है, और रविंद्र मोहन दास जी का भी बिहार से मेल आ चुका है आशा के साथ में। विनीत, आपका भी मेल शामिल किया जा चुका है। अजमत अली, अभी आपने मेल किया है जस्ट हमें, और शाहरुख अंसारी और शर्म सिंह जी, आप सभी को, सभी का मेल शामिल कर लिया गया है। गाने भले ही कम पहुंचते हों आप तक, क्योंकि थोड़े थोड़े से गाने तो पहुंचा नहीं सकते हैं, तो बस इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया सुनना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ 3:30 पर हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT बिल्कुल नहीं भूलना है सुनना, तो बस सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर, और वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो में आ गई हूँ मैं आरजे महिमा, लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिकार। दोस्तों, आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि एक ओर हम बात करेंगे म्यूजिक और मेंटल हेल्थ की, और क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एक प्यारा सा सॉन्ग वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। साथ ही आज 23 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की भावना को करेंगे सलाम, क्योंकि जब खेल और म्यूजिक साथ आते हैं तो जीत का जज्बा और भी बुलंद हो जाता है। इसके अलावा सेलिब्रेट करेंगे इंडियन सिनेमा के शानदार एक्टर राज बब्बर का बर्थडे, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। सो बी रेडी, क्योंकि अगले एक घंटे में होंगे बेहतरीन सॉन्ग्स, इंटरेस्टिंग बातें, जानकारियां और ढेर सारी मस्ती।

0: जी बिल्कुल, इट्स द टाइम टू डिस्को। और आज हम बात भी करेंगे एक ऐसे साथी की जो बिना कुछ कहे हमारी फीलिंग्स को समझ लेता है और मुश्किल समय में हमारा हौसला बन जाता है। यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक की। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, जब उदास होते हैं तो दिल के करीब कोई स्लो मोशन का सॉन्ग हमें सुकून दे जाता है, और जब टेंशन में होते हैं तो म्यूजिक बजते ही एक जो नई एनर्जी मिलती है ना, उससे लगता है जैसे टेंशन छूमंतर हो गया। तो भाई म्यूजिक है ही ऐसा कि सीधे दिल उससे अपने आप जुड़ जाता है।
1: Get on the dance floor. Get on the dance floor.

जी हाँ, हमें भी म्यूजिक से प्यार हो गया है, क्योंकि म्यूजिक केवल एंटरटेनमेंट नहीं है गाइस, बल्कि ये हमारी यादों का खजाना है। जरा सोचिए, जब आपका दिन बहुत मुश्किल भरा रहा हो और अचानक आपका फेवरेट सॉन्ग बज जाए तो कैसा फील होता है? मैं बताती हूँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर आजकल लाइफ की भाग दौड़ आपको थका रही है, तो कुछ मिनट के लिए ठहर जाइए, हेडफोन

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप हैं रेनबो कानपुर के साथ और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसे में एक बढ़िया सा सॉन्ग हमारे उन फीलिंग्स का आईना बन जाता है, क्योंकि म्यूजिक ही वो एहसास है दोस्तों जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो उनके लिए

सॉन्ग हमारे उन फीलिंग्स का आईना बन जाता है, क्योंकि म्यूजिक ही वो एहसास है दोस्तों जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो उनके लिए बेहद खास होते हैं, है ना?

जी हाँ, क्योंकि मूवी का टाइटल ट्रैक एंजॉय किया आपने। दोस्तों, बात चल रही है म्यूजिक मेंटल हेल्थ और दिल के कनेक्शन की। तो अब एक सवाल आपके लिए कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपका खराब मूड तुरंत अच्छा कर देता है, या कोई ऐसा सॉन्ग जिसे सुनकर आपको अपनी लाइफ का कोई खास पल याद आ जाता हो। लिख भेजिए अपना जवाब ईमेल के जरिए, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, aarkansomedia@gmail.com। तो जल्दी भेजिए अपना आंसर, हो सकता है आपका मेल अगले सेगमेंट में मैं ऑन एयर सुनाऊं।

0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद।

0: ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो द म्यूजिकल हार्टबीट।
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
0: AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
2: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मन को आराम देना भूल जाते हैं और शरीर की थकान तो हम पहचान लेते हैं लेकिन मन की थकान को नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे में म्यूजिक हमारे लिए छोटी सी छुट्टी की तरह काम करता है। बस कुछ मिनट एक फेवरेट सॉन्ग और मन को मिलता है सुकून, क्योंकि गाइज हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर पल खुशियों से भरा नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल दिन के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और कभी कभी उस सुबह तक पहुंचने में म्यूजिक हमारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है ना।

भाई रुकी रुकी सी जिंदगी को ट्रैक पर लाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ का हर पल अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ। फिलहाल तो आपने एंजॉय किया मस्त मूवी का ये ट्रैक। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो स्ट्रेस में हो या लोनली फील कर रहा हो, तो उससे अपना टाइम दीजिए, उसकी बातें सुनिए या उसके साथ उसका पसंदीदा सॉन्ग एंजॉय कीजिए, क्योंकि कई

जी हाँ गाइस, आप भी चक दीजिए गम और जुड़ जाइए म्यूजिक के संग। 102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आज महिमा के साथ। दोस्तों, आज 23 जून को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो हमें उस भावना से जोड़ता है जिसे पूरी दुनिया ओलंपिक स्पिरिट के नाम से जानती है। ये भावना हमें सिखाती है कि प्रतियोगिता से पहले इंसानियत आती है और पदक से पहले प्रयास। गाइस, ओलंपिक हिस्ट्री में ऐसे कई पल आए हैं जब खिलाड़ियों ने खेल भावना की मिसाल पेश की। किसी ने अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प की तो किसी ने जीत से ज्यादा सम्मान को महत्व दिया। आज जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब खेल हमें जोड़ने, प्रेरित करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। और हमारी लाइफ भी तो कुछ ऐसी ही है दोस्तों, जो हमें टीम वर्क, पॉजिटिविटी और कभी हार ना मानने वाला जज्बा देती है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा का वर्सेटाइल ट्रैक एंजॉय किया आपने। गाइस क्या आप जानते हैं कि आज यानी 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक गेम्स की नींव रखी गई थी फ्रांस के शिक्षाविद और खेल प्रेमी पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का गठन हुआ और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक ओलंपिक खेलों का सफर। और तब से लेकर आज तक ओलंपिक सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने वाला एक वैश्विक उत्सव बन चुका है।

खेले हम जी जान से मूवी का ये टाइटल ट्रैक एंजॉय किया आपने। और दोस्तों अब सेलिब्रेट करते हैं इंडियन सिनेमा के दमदार एक्टर और लोकप्रिय राजनेता राज बब्बर का बर्थडे। 23 जून 1952 को जन्मे एक्टर राज बब्बर ने अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों के दिलों में खास पहचान बनाई। इमोशनल रोल हो या विलन का किरदार, उनकी एक्टिंग ने हर रोल को उतनी ही शिद्दत से पर्दे पर उतारा। रेनबो टीम की ओर से एक्टर राज बब्बर को आज उनके बर्थडे पर ढेर सारी विशेज। और अब एंजॉय कीजिए उनकी ही एक मूवी का ये आइकॉनिक सॉन्ग।

0: तो दोस्तों आज के म्यूजिकार प्रोग्राम का खूबसूरत सफर होता है यहीं पर खत्म। यादों में म्यूजिक की मिठास और दिल में खुशियों की बात लिए मुझे यानी आरजे महिमा को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे यूं ही किसी म्यूजिकल मोड पर। टिल देन टेक केयर एंड टाटा बाय बाय एंड यू स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
2: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर। शाम के बज रहे हैं 4 और एक बार फिर जुड़ चुकी हूँ मैं आपके साथ आरजे महिमा प्रोग्राम आपकी पसंद में। जी हाँ, आपकी पसंद, वो खास महफिल जहाँ बजेंगे आपके फेवरेट सॉन्ग्स और जुड़ेंगी आपकी फरमाइशें। तो अगले एक घंटे तक हम साथ मिलकर सजाएंगे सुरों, यादों और मुस्कुराहटों का खूबसूरत सफर। और इस सफर का साथी बनने के लिए लिख भेजिए हमें अपना ईमेल, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए aarkansomedia@gmail.com। फिलहाल मैं प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम आपकी पसंद का ये पहला सॉन्ग।

मेरे हम सफर मूवी से ये टाइटल ट्रैक एंजॉय किया आपने, और इस ट्रैक को सुनने के लिए ईमेल आया था भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। इसके अलावा एक और ईमेल आया है, यह है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा का। एक और ईमेल हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आया है पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का। इसके अलावा मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ईमेल आया है अभिजीत और सरिता एकांश का। बदलापुर मुंबई से ईमेल मिला सिद्धांत, प्रणीता और टुकटुक का। इसके अलावा आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हमें ईमेल मिला वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि और परी का। 102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, मेरे यानी आरजे महिमा के साथ।

जी हाँ, तौबा तुम्हारे यही इशारे। चलते चलते मूवी का ये ट्रैक एंजॉय किया आपने, और इस ट्रैक को सुनने के लिए ईमेल आया था मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस का, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का। इसके अलावा कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द का हमें ईमेल मिला। और एक और ईमेल आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इसके अलावा एक और ईमेल आया है मथुरा से लुबना अंसारी, सबा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि का। जयपुर से आफताब अंसारी का भी ईमेल हमें मिला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चोरी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा का ईमेल हमें मिला है। एक और छत्तीसगढ़ से ही एक और ईमेल हमें मिला है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन का, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा का भी ईमेल हमें मिला। और स्क्रीन पर एक और ईमेल हमें नज़र आ रहा है, ये आया है मालियान सद्धना मेरठ से अनिल जैन और संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन का। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कुछ ना कहो इस मूवी का ये सॉन्ग।

जी हाँ, कुछ ना कहो मूवी का ये सॉन्ग एंजॉय किया आपने, और इस सॉन्ग को सुनने के लिए ईमेल लिख भेजा था बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक और यश मंसूरी ने। इसके अलावा बघेरी दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का ईमेल हमें मिला। इसके अलावा एक और ईमेल आया है, यह आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बास, शहनाज, नावेद हसन, सुहेल, रसीद, अनम और यशव का। और ये जब आपको सुनाते हैं खाकी मूवी का ये सॉन्ग, जिसके लिए ईमेल लिख भेजा है सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन ने। इसके अलावा एक और ईमेल आया है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके पूरे परिवार ने। लीजिए आप भी इंजॉय कीजिए खाकी मूवी का ये ट्रैक।

और दोस्तों इसी सॉन्ग के साथ प्रोग्राम आपकी पसंद से मुझे यानी आज महिमा को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि समय की कमी के रहते आज जिन लिसनर्स की ईमेल हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए उन्हें आगे जरूर शामिल करेंगे। बस आप भेजते रहिए अपने पसंद के सॉन्ग्स को सुनने के लिए ईमेल, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए aarkansomedia@gmail.com। Till then, take care and tata bye bye.

पांच बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। एजेंसी ने बताया कि 11 मई से 31 मई तक 321 शहरों में 35 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। विदेशों में भी 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। श्री कश्यप ने लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन छात्रावास में स्थापित फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट कराने के साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम मानक व गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ के अलीगंज में कल 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। विशेष जांच दल ने आज घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। टीम अंदर से सबूत जुटा रही है। इसके बाद एसआईटी ने केजीएमयू पहुंचकर घायलों से मामले की जानकारी ली। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तिगरी गंगाधाम और ब्रिज घाट में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से 25 जून की सुबह 8 बजे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। शासन ने वाराणसी रोपवे सेवा की किराया दरें अधिसूचित कर दी हैं। कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 तथा अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा।

वेल रेनबो तो है जिसे हर दिल गुनगुनाता है, और 5:03 का ये वक्त हो गया है, और ये वक्त इशारा कर रहा है कि भाई आपको इंतजार है एफएम टॉप 10 का, कि कौन से वो 10 गाने हैं जो आज काउंटडाउन में शामिल होंगे, और कौन सा वो साल रहेगा जो मैं इस बार लेने वाला हूँ। वेल इस बार मैंने लिया 1994 यानी कि 1994, और 1994 के 10 जो गाने हैं काउंटडाउन जो है वो शुरू होगा पायदान नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर के गाने से, सीधे हम पहुंचेंगे टॉप गाने पर। और आज का 10वां गाना कौन सा है ये बिल्कुल आपको सुनवाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ यानी कि देव के साथ 100.7 FM रेनबो पर, और एंजॉय करते रहिए ये शो जिसका नाम है FM टॉप 10। तो 1994 का जो ये दौर था उसमें 10वें नंबर पर, 10वें पायदान पर कौन सा गाना है, वो ये वाला गाना है नंबर 10 पर, जो कि फिल्म इम्तिहान से है, और बोल है फायज अनवर के और म्यूजिक है अनु मलिक का। फिल्म का म्यूजिक काफी पॉपुलर हुआ था और बिल्कुल 90s के जो लोग हैं उन्होंने इस गाने को एंजॉय भी किया था, है ना। तो चलिए आज के 10 नंबर के इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लौट कर आता हूं फिर 9वें पायदान पर कौन सा गाना ये आपके साथ शेयर करूंगा।

वेल, ये 10 नंबर का गाना भी आपने सुना फिल्म इम्तिहान से, और अगला गाना है फिल्म ये दिल्लगी से। यशराज फिल्म्स की ये प्रस्तुति थी और लिरिक्स समीर के और म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन का। ये गाना म्यूजिक चार्ट्स में काफी हिट था, आवाज अभिजीत की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 5:14 का ये वक्त हो रहा है। काउंटडाउन शो एफएम का टॉप 10 शुरू हो चुका है। 10वें नंबर का गाना और 9वें नंबर का गाना आप सुन चुके हैं और अब वक्त है कि 8वें पायदान पर कौन सा वो गाना है। और ये गाना जो अभी आपको सुनवाने जा रहा हूँ, ये मतलब इस गाने को लिखा है समीर ने और आनंद मिलिंद का संगीत है और उस दौर में ये गाना लोगों की जुबान पर काफ़ी चढ़ा था और फिल्म है गोपी किशन। तो मुझे लग रहा कि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, नहीं हुआ तो चलिए हम गाना आपको सुनवाते हैं 8वें नंबर का ये।

वेल, इस गाने पे अगर आप थोड़ा सा थिरक लिए होंगे तो अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, यानी कि सातवें नंबर पर और सातवें पायदान पर कौन सा गाना है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे क्योंकि आप इस शो पर हैं और इस शो का नाम ही है एफएम टॉप 10। और टॉप मतलब नीचे से जो है वो आपने तीन गाने एंजॉय कर लिए हैं, 10, 9 और 8 नंबर पर। और 7 नंबर पर जो गाना है इसमें आनंद मिलिंद का संगीत है और समीर का लिखा ये गीत है और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज है और इन सब ने मिलकर पहुंचाया है इस गीत को नंबर 7 पर। फिल्म है सुहाग और गाना है गोरे गोरे मुखड़े पे।

वेल, 10, 9, 8 और 7 ये पायदान हम पार कर चुके हैं। अब वक्त है छठे नंबर पे, कौन है छठे नंबर के पायदान पर, कौन है और इसमें जो गाना है वो उसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने और जमीर काजमी का लिखा यह गीत है और अनु मलिक का संगीत। तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं ये गाना। नंबर 6 पर फिल्म है विजयपथ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
3: वेल 5:33 का ये वक्त हो रहा है, यानी कि लगभग आधा सफर हमने तय कर लिया है वक्त से भी, और गाना के जो काउंटडाउन चल रहा है उसमें भी लगभग 5 गाने निचले पायदान से हमने तय कर लिया, यानी कि 10, 9, 8, 7 और 6, 10, 9, 8, 7, 6 गाने जो हैं, उल्टी जो गिनती है वो हमने लगभग 5 गानों की पूरी कर ली। अब 5 गाने बचे हैं और वो 5 गाने कौन है जरूर आपको पता चलेगा जब आप बने रहेंगे हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे ये शो टॉप 10, जिसमें आज 1994 के 10 गानों का काउंटडाउन मैं आपका दोस्त देव लेकर आया है आपके लिए। तो चलिए पांचवें नंबर पर कौन सा गाना है ये जरूर आपको पता चलना चाहिए। नदीम श्रवण और समीर का एक बार फिर कॉम्बिनेशन देखने को मिला इस गाने पर, और फिल्म का साउंड ट्रैक 1994 के बेस्ट सेलिंग एल्बम्स में से एक था, और इस गाने को लोग काफी पसंद करते थे।

वेल, इस दिल्ली के काउंटडाउन में यानी कि 1994 के काउंटडाउन में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं पायदान नंबर 4 पर, यानी कि काउंटडाउन नंबर सॉन्ग नंबर 4 कौन सा होगा ये जरूर आपको बताऊंगा मैं। और गोविंद और करिश्मा की फिल्म से ये गाना है और फिल्म भी खूब चली और गाने भी आनंद मिलन का संगीत और समीर के गीत, आवाज अभिजीत की। जी, फिल्म है राजा बाबू।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मतलब पायदा नंबर 3 पर कौन सा गाना है, और ये गाना भी काफी हिट हुआ था, काफी पसंद किया था। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से ये है, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, और फिल्म का म्यूजिक चार्टबस्टर था जी, चुरा के दिल मेरा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: वेल, काउंटडाउन में अब हम पहुंच गए हैं दूसरे पायदान पर, और वक्त है कि आज के दूसरे नंबर का गाना जो है वो कौन सा है 1994 का। तो वो गाना ये रहा, बिल्कुल, और जी हाँ, फिल्म मोहरा से ये गाना है, वीजू शाह का संगीत और उदित नारायण साथ में अलका याग्निक की आवाज। और फिल्म का साउंड ट्रैक 1994 का सेकेंड बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक था। एंजॉय कीजिए पायदान नंबर 2 पर ये गाना फिल्म मोहरा से, टिप टिप बरसा पानी।

वाले 10 से लेकर बिल्कुल दूसरे नंबर तक के गाने हमने सुन लिए। अब इंतजार होगा आपको कि पहले नंबर का गाना कौन सा है। इतने सारे अच्छे अच्छे गाने तो बज गए, आखिर वो कौन सा गाना बचा है जो कि नंबर वन के स्लॉट पर है। बता दें आपको कि ये गाना जो है वो देव कोहली के लिरिक्स हैं, इसमें लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं, म्यूजिक है राम लक्ष्मण का। 1994 का ये बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक रहा। और आप एक फिल्म मिस कर रहे हैं और वो फिल्म कौन सी, बिल्कुल अभी आपको पता चल जाएगा। और एक गाना भी बहुत ही फेमस है और बहुत ही मतलब फिल्म भी काफी चली और इस फिल्म के सारे गाने बहुत चले, जैसे कि मैंने बताया ना कि साउंड ट्रैक बेस्ट सेलिंग रहा। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी के साथ डीजे देव को इजाजत। आज का ये पहला टॉप गीत बना है फिल्म हम आपके हैं कौन से, दीदी तेरा देवर दीवाना। 5:56 का यह वक्त हो गया है। अब देव लेते हैं आपसे इजाजत, मिलता हूं अगले प्रोग्राम में, अगले शो में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

छह बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2024 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा। राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। लखनऊ के अलीगंज में कल 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। विशेष जांच दल ने आज घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। टीम अंदर से सबूत जुटा रही है। वहीं अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने यह रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। रिपोर्ट जमा करने के बाद श्री पंत ने कहा कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और ये एक गोपनीय दस्तावेज है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिरों में लोगों ने दर्शन पूजन किया। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। लखनऊ में इस अवसर पर कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेल एफएम रेनबो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर आप हैं और एक बार फिर मैं यानी कि आपका दोस्त देव 100.7 एफएम रेनबो पर। और इस वक्त मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है इस शो पर, इस प्रोग्राम पर, जिसका नाम है शामे अवध। वेल शामे अवध में बहुत सी बातें होती हैं करने को, बहुत सी चीजें होती हैं आपके साथ शेयर करने को कि शहर में क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या गतिविधियां हो रही, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। लेकिन उन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए और साथ ही साथ म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए आपको हमारे इस प्रोग्राम में बने रहना होगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा जिसका नाम है 100.7 एफएम रेनबो। तो चलिए अब देव के साथ बने रहिए, एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए और साथ ही साथ हाँ बिल्कुल अपना काम धंधा जो है वो भी आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि सारी चीजें सब एक साथ चलती रहनी चाहिए ना, क्योंकि कोई भी चीज रुकनी नहीं चाहिए, तो फिर एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला भी नहीं रुकेगा।

वाला चलिए आज की जो बातें हैं वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है वो आपको बताने कि अगर आप थिएटर यानी कि संग का मतलब आनंद लेना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से कार्यशाला में यानी कि उनकी जो कार्यशाला हुई थी उसमें एक नाटक तैयार किया गया था बूंद पानी की। इसका मंचन हो रहा है SNA अकेडमी परिसर में ही। शाम को 6 बजे का ये इसका वक्त है और 6 आना के बज चुके हैं और 6:16 हो गए। अगर आसपास रहते हैं, पहुंच सकते हैं टाइम से, तो फिर पहुंच जाइए। और अगर आपको पहले से पता, आप पहले से वहीं पे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका ये नाटक छूट भी गया तो एक और मौका आपके पास है। आपके पास एक और जो है वो नाट्य प्रस्तुति है भूसा, उसका मंचन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में हो रहा है। इसका शाम 7 बजे का वक्त है, यानी कि इसके लिए भी आपके पास वक्त है थोड़ा सा। और अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं तो 7 बजे तक आराम से आप पहुंच सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर पहला नाटक छूट गया उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जा सकते हैं, नहीं तो फिर इस वाले बौद्ध संस्थान में आप जा सकते हैं। तो मतलब खैर, अगर आप थिएटर के फैन है, मतलब थिएटर देखना आपको पसंद है, तो दोनों में से किसी को भी इंजॉय कर सकते हैं। और 7 बजे का जो ये वक्त है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में है, यहाँ पे तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो देव के साथ शामियाबाद।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तुम सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: वल 6:27 का ये वक्त हो रहा है और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक खास चीज जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो ऑनलाइन जो प्रवेश फॉर्म होते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो आप अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म भरने की जो डेट है उसे 22 से बढ़ाकर 28 जून कर दी है। और अब ये बताया गया कि फॉर्म भरने का ये लास्ट मतलब चांस है, अंतिम अवसर दिया गया है और इसके बाद मत उम्मीद कीजिए कि फिर से आपको चांस मिल जाएगा या फिर से कोई डेट में बढ़ोतरी होगी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने जो 8 जो पाठ्यक्रम होते हैं जैसे सम सेमेस्टर के परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इनमें MA पर्शियन, MSA एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MSc AG हॉर्टिकल्चर और MSc AG सेल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, BSc AG ऑनर्स और एग्रीकल्चर शामिल हैं। तो इनके रिजल्ट जारी हो गए हैं और उम्मीद है कि आपको जरूर पता चल गया होगा, नहीं पता चल गया हो तो आज ही तुरंत जाकर चेक करें।

जी हाँ बिल्कुल, ये गाना भी आप बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं आपको कि आप इस वक्त ट्यून्ड हैं 100.7 एफएम रेनबो पर। वक्त हो गया 6:37 का और मैं हूँ देव आपके साथ। सो कीप एंजॉयिंग 100.7 एफएम रेनबो। और शाम का ये वक्त है, बिल्कुल आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब आज दिन तो मंगल है और आप ऑफिस से आ रहे हैं या फिर घर में बैठे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हमें अपने साथ ज़रूर बनाए रखें।

वेल, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उसको रिन्यू कराना है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसका जो नवीनीकरण कराते हैं ना, तो जब उसको फिर से इशू कराते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अब आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि राजधानी में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ADTC का संचालन राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है इसको, और शायद इसी महीने के लास्ट तक, आखिर तक जो है ये केंद्र, ये सेंटर शुरू हो जाएगा और वहां पर सेंसर और कैमरों की निगरानी में टेस्ट होगा और लगभग 3 मिनट 25 सेकंड के टेस्टिंग ट्रैक पर जो सफल नहीं होंगे उनका जो रिन्यूअल है वो लटक सकता है। और अभी तक फिलहाल ये मैनुअल ही हो रहा था टेस्ट, और ट्रांसपोर्ट नगर व देवा रोड पर अभी तक जो है वो DL जो भी आवेदन करते थे उनको मैनुअल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था, और इसमें बहुत बार जो है वो अनदेखी हो जाती थी, शिकायत हो जाती थी और प्रॉपरली जो है वो टेस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है वो कैमरों की और सेंसर से की मदद से ये टेस्ट होंगे और अब इसको क्लियर करना मुश्किल होगा, इसलिए प्रॉपरली जो है बिल्कुल तैयार रहिए रिन्यू करना या फिर नया लाइसेंस भी बनाना है अगर तो भी। 6:42 का ये वक्त, फिलहाल ये ट्रैक अगला आपके लिए।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स।
3: खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नया पाठ्यक्रम, एक नया सिलेबस शुरू हो रहा है, एक नया कोर्स शुरू हो रहा है और जो लोग भी इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाके पता कर सकते हैं। वो ये है कि सत्र 2026-27 में ही विधि संकाय के अंडर जो है ये BBA LLB यानी कि ये 5 साल का ये एकीकृत ये कोर्स होगा और ये पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है और ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय यानी कि पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कोर्स जो है वो शुरू होगा और इसमें 180 सीटें हैं और अगर आप इसमें प्रवेश चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो आगे की बहुत सारी जानकारी या जो भी डिटेल्स उनको चाहिए वो इस पाठ्यक्रम, इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkounivi यानी कि lkounivi.ac.in पर जाकर और ज्यादा जानकारी इस कोर्स के बारे में जुटा सकते हैं।

कल हाँ एक और खबर जो कि सुबह टहलने जाते हैं बहुत अच्छी बातें सेहत बनाते हैं, लेकिन भाई उन लोगों की मतलब ये ज्यादा जरूरी जानकारी है जो कि बसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह टहलने जाते हैं, वो ये है कि अब जो है पहले शुल्क लगता था लगभग 15 रुपए का, और अब सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर आप सुबह टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो ये फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। यानी जो भी जाते थे वो लोग अब फ्री में जो है वहां पर टहल सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं सुबह 5 से 8 बजे के बीच। ये बसंत कुंज योजना स्थित जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है वहां की बात बता रहा हूं। और इसी के साथ ही दीजिए देव को इजाजत इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने का, और जल्दी होगी फिर आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में जहां पर आप हाँ बिल्कुल फोन करते हैं हमें और हमसे बात करते, साथ ही अपनी फरमाइश पूरी करवाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। देव से बाय फिलहाल अभी इस प्रोग्राम से।

सात बजे हैं, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। लखनऊ के अलीगंज में कल 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल ने आज घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया। वहीं अलीगंज पुलिस की ओर से मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में अग्निकांड के बाद प्रदेश के कई जिलों में आज स्थानीय प्रशासन ने होटल और कोचिंग सेंटर में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी में मानकों का पालन नहीं करने पर एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर, कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, वहीं कृषि के क्षेत्र में रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर तिगरी गंगा धाम और ब्रिजघाट में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से 25 जून की सुबह 8 बजे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। प्रदेश शासन ने वाराणसी रोपवे सेवा की किराया दरें अधिसूचित कर दी हैं। केंद्र, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 तथा अधिकतम 50 रुपए निर्धारित किया गया है। हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन और जल निगम द्वारा संचालित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बंधुआ मजदूरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तितावी क्षेत्र की एक फैक्ट्री से 12 श्रमिकों को मुक्त कराया है। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा।

वेल गुनगुना रहे हैं आप, और हमें पता है कि गुनगुनाने का एक मौका और अभी आपके पास है, और बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कारण है, रीजन है, क्योंकि अब आप हमें फोन करेंगे और चाहेंगे कि हम आपसे बात करें और आपकी पसंद पूरी करें, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो जी बिल्कुल हाजिर हूं मैं आपका दोस्त देव, इस उम्मीद को बनाए रखने में और इस उम्मीद को पूरा करने में मेरी पूरी जो है वो भागीदारी रहेगी कि आपसे बात हो और आपसे की फरमाइश वो मैं पूरी कर सकूं। तो स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में, इस शो में जिसका नाम है हेलो एफएम। तो चलिए फोन मिलाइए, नंबर आपके पास है जल्दी से, और अपनी फरमाइश पूरी करवाइए हमसे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए पहले ये ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और बिल्कुल इस ट्रैक की तरह ही आपके दिल में भी म्यूजिक बज रहा होगा, गिटार बज रही होगी कि शायद आज मेरा नंबर लग जाएगा, है ना।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी और देखिए, बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने की देर होती है और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, जो कॉलर्स हैं, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पहले ही है कॉलर, कोई है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज बात करते हैं, जानते हैं कौन है। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
2: जी गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कौन है। सबसे पहले लोग तो ये जाने कि किससे बात हो रही है।
3: जानी पहचानी आवाज।
2: जी
3: सर, मैं हूँ रोशनी रावत, ग्रामा पोस्ट बमना, तहसील सखीपुर, जिला उन्नाव।
2: जी रोशनी रावत।
3: जी सर।
2: जी रोशनी, इस वक्त आप यहाँ पे तो है नहीं, आप शायद बाहर रहती हैं, अपना काम करती हैं?
3: जी सर, मैं चंडीगढ़ में।
2: जी जी बिल्कुल। और इस वक्त बताइए, अभी तो शॉप में हैं अपने या फिर?
3: जी सर, अभी कैफे में हूँ।
2: अच्छा, कितने बजे तक मतलब आपकी शॉप?
3: जो कैफे है सर, सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक ओपन रहता है।
2: रात में 10 बजे तक?
3: जी सर।
2: उसके बाद फिर घर जाती हैं और फिर सुबह 8 बजे खोलना होता है?
3: नहीं है, बस 2 मिनट की देरी के पास में घर है और ऑफिस है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोपहर में तो हम बंद ही रखते हैं 204।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये 10 बजे तक मतलब आपका अपना काम है, तो काम करने में मजा आता होगा, इंटरेस्ट लेती होंगी आप, है ना?
3: सर बिल्कुल आता है। और एफएम रेनबो के साथ कितना ही मतलब टाइम हो जाए, पता ही नहीं चलता कि हम इतनी जल्दी समय खत्म हो गया।
2: नहीं, मेरा सवाल ये कि

0: आपका अपना काम नहीं होता कहीं और पे, अगर आप जॉब कर रही थी तब तो फिर घड़ी देखते हैं कि जल्दी से 5 बजे 6 बजे हम निकलें।
1: वो तो है ही, अपना काम अलग होता है, किसी के पास दूसरे के पास काम करना अलग होता है।
0: मतलब इंसान जब जी खुद काम कर रहा तो खुद अपना एफर्ट डाला तो उसे पता हो कि हम जितने इसमें एफर्ट डालेंगे उतना मुझे फायदा होगा, तो वो इंटरेस्ट लेकर काम करता है।
1: जी सर, इसमें तो अपने काम में तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है सर,
0: मतलब जी
1: और के पास करते हैं, बस यही होता है कि जल्दी से समय दिखते बस घर भागे।
0: क्या बात क्या बात। चलिए, और इसी तरह से आप बिल्कुल लगन से काम करते रहिए, और आपका जो काम है, जो बिजनेस है, जो भी आप कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो और आप तरक्की करें, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ।
1: धन्यवाद।
0: और ये गाना हमने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिएगा।
1: काफी दिन के बाद बात हुई है आपसे, और मैं कुछ अपने बहनों और भाइयों का नाम लेना चाहती
0: हूँ। जी जल्दी से।
1: गुलाब्ता दीदी, नीलू दीदी, बबीता राव और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी और यासिर भाई हमारे, महेंद्र भैया और तालिब भैया
0: जी,
1: और आशीष भैया तेलंगाना से, सभी लोग सुन रहे हैं सर आपको।
0: चलिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय रोशनी जी।
1: बाय बाय।

0: In the corporate world, if you come across as too nice, people don't respect you more. They just assume.
1: वेल, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर आ गए हैं, जल्दी से आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो

0: का नाम सुनते ही ना वो बड़ी राहत महसूस हो रही है, बस नाम से ही। ये बताइए शिमला में मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत गर्म है।
1: मौसम ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: क्या बात है, और मतलब कैसे कपड़े, स्वेटर जैकेट लग रहे हैं या फिर बस एक
1: नहीं,
0: स्वेटर?
1: नहीं, नहीं, नहीं, एक कमीज है और एक जो अंदर की जो इनर होती है वो डाली है।
0: अच्छा, मतलब सुहाना मौसम कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा ठंड ना गर्मी तो है नहीं।
1: ना, ना, ना, सुहाना मौसम है। जी जी जी
0: चलिए बढ़िया। आपसे पहली बार बात हो रही है?
1: वैसे तो आपके कई बार कॉल कर चुका, लेकिन कई बार लाइन भी होती तो लग नहीं पाती, तो फिर आज मैं लग गई।
0: नहीं, पहली बार बात कर रहे हैं, इससे पहले आपकी बात हुई है यहाँ पे?
1: हाँ, इससे पहले भी हुई थी, कई बार बात हुई थी।
0: चलिए चलिए, क्या बात, क्या करते हैं राकेश जी?
1: हम तो सेब की बागवानी करते।
0: क्या बात है, बढ़िया, मजेदार, इंटरेस्टिंग, सेब की बागवानी।
1: जी जी जी जी जी
0: ओके, तो ये मतलब बागवानी सेब की तो वहाँ पे होती ही। खैर, और ये बताइए, ये जब बागवानी करते हैं उसके बाद खुद ही मार्केट तक ले जाते हैं, उसके लिए मतलब अलग लोग हैं?
1: जी, हम तो सिर्फ मंडियों में ले जाते, तो मंडियों से सिर्फ क्या बोलते मार्केट तक पूरे देश पहुंच जाती है।
0: तो आपके जो सेब है यहाँ पे भी पहुंचेंगे कभी लखनऊ में भी? तो हमने भी टेस्ट किया होगा।
1: बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में पहुँचते, गुजरात और ये राजस्थान में तो पहुँचते, लेकिन आपके क्षेत्र में ज्यादा पहुँचते।
0: क्या बात है, तो चलिए कभी हमने भी आपके बाग के जो है वो सेब जरूर एंजॉय किए होंगे, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल किए होंगे।
0: तो चलिए ये बताइए कि ये जो गाना आप सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करेगा। हमारे रेडियो मित्र हैं भगवान सिंह परमार हैं, पूर्ण वर्मा हैं, मांगीलाल चंदेल हैं
0: जी,
1: और तमाम सुनने वाले श्रोता है, क्योंकि दोस्तों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है, क्योंकि हम आकाशवाणी के माध्यम से हर राज्य से श्रोता से कांटेक्ट हमारा होता हो चुका है, कई सालों से हर राज्य की श्रोता से कांटेक्ट है।
0: जी चलिए बढ़िया, और ये गाना जो आपने चूज किया है ये आशिकी फिल्म से है, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय राकेश जी।
1: ओके बाय बाय।
0: ओके बाय।

0: हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ चलिए बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं शिमला से राजेश बात कर रहा हूँ।
0: जी शिमला से।
1: जी जी जी जी
0: क्या बात है, क्या बात है। शिमला में मतलब अभी तो यहाँ

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण

0: रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद KGMU पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित SIT में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
2: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल UP गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
3: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
5: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।

0: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रूपये और अधिकतम 50 रूपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रूपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
2: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रूपए और अधिकतम 50 रूपए में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: और अब प्रस्तुत है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स।

0: Argentina at the tournament. Since then, he's scored at every World Cup apart from the 2010 competition in South Africa. Messi turns 39 on Wednesday.
1: Well, Argentina are through to the last 32. They're joined by France and Norway. Kylian Mbappe scored twice as France beat Iraq 3-0, while there are also two goals for Norway's Erling Haaland as they beat Senegal 3-2. Algeria beat Jordan 2-1 in San Francisco. That win keeps Algeria's hopes alive of reaching the knockout stages. They're third in Group J. There's a big night ahead for England as they play Ghana in Boston in Group L. Victory would see them progress to the last 32 as Group winners. Here is the England midfielder Declan Rice.
2: I've played against a lot of the Ghana team, so I know what they're going to bring. They're going to bring strength, pace. They're going to want to catch us out on the counter-attack. So yeah, we need to be ready for everything.
1: Portugal are also back in action today. They face Uzbekistan in Houston in Group K. For more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
3: World Football Update from the BBC.
4: वेल अब 7:32 का ये वक्त हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर होल्ड पे हैं और आइए जानते हैं वो कॉलर और उनकी क्या फरमाइश, उनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और पता चलेगा वो कौन है, कहां से उन्होंने फोन मिलाया है। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: हाँ वालेकुम अस्सलाम जी।
5: सीतापुर पटेनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बताइए आप कैसे हैं?
4: जी नमस्कार आपको, और हम बहुत अच्छे हैं। और आपने काफी देर होल्ड किया क्योंकि एक बार जब फोन लग जाता है तो मतलब बात तो होनी है, इसलिए होल्ड करे रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना?
5: कोई दिक्कत नहीं है, फोन बहुत मुश्किल से लगता है, लग गया तो होल्ड पे हुए तो क्या हुआ।
4: वेल आपका अक्सर फोन लग जाता है वैसे, आप ट्राई करती हैं रोज में? अच्छा रोज ट्राई करती है, थोड़ा रुक के?
5: कभी हार नहीं होती सर।
4: नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोज जैसे बात हुई तो उसके बाद क्या दो चार दिन एक हफ्ता गैप देती हैं या फिर कल फिर आप मतलब?
5: हाँ बिल्कुल गैप देते हैं बिल्कुल।
4: चलिए बढ़िया, और लास्ट बात आपकी कब हुई?
5: आज हो गए 4-5 दिन।
4: चलिए बढ़िया, और 4-5 दिन के बाद आपने फिर लगाया और फिर लग गए, मतलब बहुत लकी हैं आप।
5: वही तो बता रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
4: अच्छा ये बताइए आप लक पर जो है वो यकीन करती हैं आपको, मतलब अभी तक जो है आपके जो काम हुए हैं या जो भी, आपको क्या लगता है कि थोड़ा लकी है या कभी लक काम करता है या सिर्फ मेहनत ही काम आती है?
5: नहीं कभी लग जाता है कभी नहीं। कल तो हमने बहुत ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लगा हमारा, लगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। हाँ उससे पहले अल्का मैम आई थी, फिर भी हमने बहुत कोशिश किया लेकिन लगा ही नहीं मेरा फोन।
4: जी तो यहाँ पे ना मेहनत है प्लस लक की बात है, यहाँ पे मेहनत आपकी थी लेकिन लक नहीं था तो नहीं मिला, आज दोनों चीजें जब मिल गई, मेहनत भी मिल गई लक भी मिल गया तो फोन भी लग गया
5: जी।
4: है ना
5: जी। और लेकिन एक दिन जब आप आए थे तो हमारा पहली बार फोन लगा था, लेकिन पहली बार आपसे बात हुई थी, फोन नहीं लगा था लेकिन पहली बार आपसे बात, लेकिन आज दूसरी बार बात हो रही है।
4: चलिए बढ़िया, और तीसरी चौथी पांचवी ऐसी बात होती रहेगी आपकी, है ना?
5: तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, गाने बहुत अच्छे चला रहे हैं।
4: चलिए थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया, सभी सुनने वालों को पसंद आया, ये हमारी कोशिश रहती है, और अगर पसंद आ रहा है तो समझिए यही जो है हमारे लिए नाम है। बिल्कुल
5: आप जल्दी जल्दी आया करो सर, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम।
4: बिल्कुल कोशिश रहेगी, कोशिश रहती है, लेकिन अब देखिए हमेशा तो नहीं हो पाता है, लेकिन
5: सीतापुर घूम जाओ सर।
4: सीतापुर
5: जी, हमारे गांव पटेनापुर आके घूम जाओ।
4: बिल्कुल बिल्कुल आते हैं और आपके ग्राम में पहुंच के हम पूछ लेंगे शमा परवीन कौन है और आपके घर तक पहुंच जाएंगे।
5: हमारे गांव में पटेनापुर में एक ही शमा परवीन है और एक ही मस्जिद, हम मस्जिद के पास रहते हैं।
4: क्या एक ही शमा परवीन है और एक ही शमा रोशन रहती है?
5: मतलब हमारे।
4: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये आपका ट्रैक आपका गाना हम प्ले कर रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना है आपको?
5: जी हाँ डेडिकेट करना है, सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं
4: जी।
5: रोशनी रावत हैं जो चंडीगढ़ से सुनती हैं,
4: और
5: लक्षा पी साहिबा अंसारी, पिंकी आरजे पूनम, वकील अहमद भाई, मोहम्मद फैज भाई, बाबू अंसारी भाई
4: जी,
5: और अकबर अंसारी, जावेद अख्तर भाई, और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं।
4: चलिए क्या बात है, और शुक्रिया
5: कुमार भाई
4: जी। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शमा जी,
5: बाय
4: बाय।

0: well, जरा फिर से कहना, और जब नंबर लगेगा आपका तो बिल्कुल आप कहिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ किसी का नंबर लग चुका है, ये उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर, सादर प्रणाम आपको।
0: जी प्रणाम, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जिस सर दिन बाद फोन मिलाया है
0: जी,
1: अपने माता जी के पास फोन के से मिलाया है आज।
0: जी जी,
1: मेरा फोन गड़बड़ है इस समय तो।
0: क्या बात है, नाम बताइए अपना।
1: विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, किनवेल, जिला सीतापुर से।
0: क्या बात है, अभी सीतापुर से एक फोन और आया था हमारे पास थोड़ी देर पहले, है ना। तो विनीत जी, क्या कर रहे हैं?
1: खेती किसानी करते हैं सर।
0: अच्छा, इस वक्त क्या कर रहे थे अभी?
1: इस समय तो कार्यक्रम सुन रहे थे और फोन लगा रहे थे।
0: ओके, अच्छा, ये फोन जो आप, ये जो एफएम है जो, ये इसको कब से सुन रहे हैं, मतलब कितना समय हो गया आपको?
1: 2002 से
0: सुन रहे हैं आप लगभग?

0: मतलब 24 साल हो गए,
1: और क्या।
0: बिल्कुल बचपन से बड़े हो गए होंगे आप तो। मतलब 24 साल में तो मतलब बहुत बहुत वक्त होता है।
1: दो लड़के हैं मेरे।
0: क्या बात है। और जब आप लड़के थे तब आपने सुनना शुरू किया होगा।
1: ऐसा नहीं सर, तब शादी ही नहीं हुई थी।
0: हाँ वही तो कह रहे, जब आप लड़के थे छोटे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: जी जी
0: है ना, तब आपने शुरू किया, तब आपके दो लड़के हो गए। ओके विनीत जी, ये बताइए तो ट्राई इससे पहले आपने कभी किया? इधर तो शायद आपने बताया अभी थोड़ी कुछ दिन पहले बात हुई थी, लेकिन मतलब पहली बार आपने कब फोन लगाने का सोचा?
1: पहली बार 2008 से।
0: अच्छा, तब से बात हो रही।
1: फैमिली बनाता था, दोपहर धमाल आता था।
0: बिल्कुल, तो उस समय भी आपने फोन लगाया, बात हुई आपकी, है ना? तो चलिए बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये गाना जो आप सुनना चाहते हैं, और किसी को डेडिकेट करना है क्या आपको?
1: डेडिकेट ओमकार है सीतापुर से, और सुरभि सीतापुर से है, समा परवीन अंसारी सीतापुर से है
0: जी,
1: और सीमा राउत राजा जी पुरम लखनऊ से है, और रिंकी पिंकी राय बरेली से है
0: जी,
1: नवनीत हरकेश है लखनऊ से, और संतोष मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से है, और मणि हरदोई से है।
0: अच्छा ये बढ़िया है, जितने भी
1: वीरपाल
0: जी,
1: वीरपाल पट्टी तरौली से है, और संजय
0: जी बढ़िया। नहीं वो तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। लेकिन ये बढ़िया कि लिसनर्स जो है, जो भी कॉलर्स फोन करते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनकर ही जो है आज ये आए हैं, ये सुन रहे हैं, तो इनको डेडिकेट करें, ये बढ़िया रहता है ना।
1: और भगवान सिंह कुमार को डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी पसंद का ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिएगा। ओके नमस्ते, बाय बाय।

0: वेल चलिए दोस्ती बढ़ाते हैं। एक और हमारे साथ हैं कॉलर, उनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सभी सुनने वालों को।
0: जी जी, वेरी गुड इवनिंग, और सभी की तरफ से मैं आपको गुड इवनिंग बोलता हूँ। कैसे हैं आप
1: सर? हम बहुत ही अच्छे हैं, और हम अपना परिचय देते हैं। हम रजनीश चौरसिया अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: रजनीश जी, बढ़िया, क्या बढ़िया है अभी?
1: बिल्कुल एकदम मस्त सर, और आप, मुझे यकीन था कि अगर आप आए हैं तो मेरी कॉल लग जाएगी।
0: क्या बात है। अच्छा, मेरे आने से कॉल नहीं लगती है, मतलब कोशिश रहती है कि, मतलब ये तो लक है ना कि हमने आपका फोन उठा लिया।
1: जी सर, आप पिछली बार भी आए थे तो मेरी कॉल लगी थी।
0: चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, अगर आपके लिए मैं लगी हूँ तो अच्छा है।
1: जी,
0: क्या करते हैं रजनीश जी?
1: सर हम टू व्हीलर के मैकेनिक हैं, और साथ ही साथ एफएम रेनबो सुनते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं।
0: ओके, तो कब से आपकी अपनी शॉप है वहाँ जहाँ पे आप रिपेयर करते हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, सुबह कितने बजे से, मतलब ये शुरू हो जाता काम आपका?
1: जी सर, सुबह 9:30 बजे से शाम को, मेरी छुट्टी जो समझती है ना सर, हम 7:00 बजे तक काम करते हैं बस।
0: ओके बढ़िया,
1: आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा, उसके बाद तो इस वक्त आपने काम बंद कर दिया अभी?
1: जी बिल्कुल, अभी हम घर आ चुके हैं।
0: अच्छा, 7 बजे ऑफ हो जाता आपका काम?
1: जी जी, और 15-20 मिनट सर मुझे घर आने में लगते हैं, न्यूज ब्रेक के बाद हम कार्यक्रम ज्वाइन करते हैं आपका।
0: अच्छा, मतलब बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल फिक्स है, 7 बजे बंद, उसके बाद 7 बजे घर पहुंच जाओ, 7:20 से 30 मिनट तक जो 10 मिनट का समाचार आता है उसमें ब्रेक ले लो, और फिर 7:30 बजे से फोन मिलाना शुरू करो।
1: जी सर बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कहा मैंने?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए बढ़िया, ये तो आपने बिल्कुल एकदम टाइम टेबल बना के रखा है। अच्छा, जिंदगी में जी
1: गाना सुना दीजिए, फिल्म बाजी करके।
0: जी हाँ बिल्कुल सुना रहे हैं, और ये चलिए आपका गाना हमने प्ले कर दिया है, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: जी सर, जितने भी लोग सुने सभी के लिए।
0: चलिए चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय,
1: धन्यवाद।

0: वेल, आज के आखिरी कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं और आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं ताकि उनकी पसंद जो है वो भी हम प्ले कर सकें, फरमाइश जो उन्होंने की है। हेलो जी, इंद्रभान जी कैसे हैं? आपका नाम जो है ना वो बहुत ही पावरफुल लग रहा है
1: जी।
0: और इंद्रभान जी कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ सर, अभी घर पे हूँ सर।
0: आप तो सर्विस करते हैं ना, आप लौट आते हैं कितने बजे तक?
1: मैं आ जाता हूँ सर 4:30 बजे।
0: ओके, और थोड़ा जल्दी भी जाते होंगे मेरे ख्याल से फिर सुबह?
1: सुबह 6 बजे
0: निकल जाता हूँ जी। हाँ, वही अंदाजा हो गया मुझे, क्योंकि 4:30 तक जब आप लौट आते हैं तो काम भी आपका जल्दी शुरू हो जाता होगा सर्विस।
1: जी सर, 6 बजे जाता हूँ, 7 बजे बायोमेट्रिक लगते हैं और उसके बाद 7:30 बजे से 2:30 बजे तक काम चलता है
0: जी।
1: और उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो इसी केंद्रों में फोन करता हूँ सर।
0: क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि इससे पहले मेरी आपसे बात हो गई है, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले शायद,
1: कई बार
0: तो इंद्रभान जी, अच्छा मौसम बताइए कैसा है वहाँ, क्योंकि मौसम की चर्चा हर तरफ चल रही है।

0: सुबह टाइम हुआ तो गर्मी किया था, जो बादल किया, फिर धूप किया, फिर बादल किया, फिर उसके बाद पानी गिरने लगा एक जगह हमारी तरफ, थोड़ा थोड़ा बूंदा पानी हुआ, इसके बाद फिर बादल हट गया सर, और इसके बाद फिर वही उमस गर्मी चैतक बना था।
1: चलिए चलिए चलिए, बढ़िया, और जल्दी से बरसात आएगी और मानसून होगा, सबको राहत मिलेगी। ओके, गाना मैंने प्ले कर दिया, किसी को डेडिकेट करना हो तो आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि वक्त कम है, आप अपना गाना भी सुन सकें, ताकि
0: बड़े मियां छोटे मियां।
1: जी हाँ,
0: सबसे पहले गीत आपको भारत को आकाशवाणी लखनऊ सभी लोगों को, सभी आपके आपके पूरे उद्घोषक भाई बहनों को, और क्या बोलते हैं स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर को, पूरे भारत के श्रोताओं को धीरे धीरे धन्यवाद, आप इंतजार कर रहा हूँ।
1: चलिए चलिए,
0: सुनने के लिए
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंद्रपान जी, शुक्रिया, ओके बाय बाय। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करें, 7:56 और 57 मिनट होने वाले, देव से बाय, जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, अगला प्रोग्राम है प्रीति के साथ।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार

पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। प्रदेश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के विनियमन को प्रभावी बनाने और अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जनपदों में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वेक्षण कर सूची तैयार करें। जो संस्थान पंजीकृत नहीं है उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराया जाएगा। इसमें भवन व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच शामिल होगी। अमरोहा में आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना को धरातल पर उतारने और दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. शेखर कुमार झा ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना व उसके प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 50 मामलों की सुनवाई हुई। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब अली,
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वस्ल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आबशार 100.7 FM रेनबो पर।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया।
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो।
5: धड़कन लखनऊ की।

जमाने भर की खुशियां भी अधूरी सी लगती थी, मगर जब तुम मिले तो जीने का एक सिला दिया तुमने। जी हाँ, जब मोहब्बत का एहसास जहन पर छाने लगे तो हवाएं भी गुनगुनाने लगती हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमनवा आरजे प्रीति, और इस हसी मोड़ पर आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। आबशार यानी कि जज्बातों का वो बहता हुआ कारवां जहां आज सिर्फ इश्क, वफा और चाहत की बातें होंगी। तो इस खूबसूरत मोड़ पर जब धड़कनें अपनी हदें लांघने को बेताब होती हैं, तब मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो चुनिंदा और मखमली गजलें जो आपके दिल की अनकही दास्तां को हंसी लफ्ज जरूर दे देंगी। तो अगर आप भी किसी की यादों में खोए हैं या कोई आपके ख्यालों को महका रहा है, तो बस हाथ थाम लीजिए इस हंसी सफर का, सुनते रहिए

सुलगती धड़कनों को और भी धड़का दिया तुमने, सुलगती धड़कनों को और भी धड़का दिया तुमने, नजर को अपनी चाहत का आईना बना दिया तुमने।

जी हुजूर, आपका भी एहतराम करता चलूं। जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी एक खूबसूरत सी गजल। कहते हैं शब भर जागना और किसी की बोलती हुई आंखों की सरगोशियों को सुनना। शब भर जागना और किसी की बोलती हुई आंखों की सरगोशियों को सुनना एक रूहानी इबादत जैसा ही तो है। जब अल्फाज थक जाते हैं तब खामोशी दिल का हाल बयां करती है। महफिले गजल का यह खूबसूरत सफर यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए आप शार।

मिले थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, मिले थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, न जाने कब रूह का रूह से वास्ता हो गया। तलाशती हूँ गुजरे हुए वक्त का वो पन्ना, जहाँ ख्वाब जन्नत के थे और सफर नया हो गया। कितना अजीब है ना, जब इस सफरे जिंदगी का आगाज हुआ तो हमारी ही हथेलियों में जन्नत के ख्वाब थे, वो ख्वाब जो फूलों के मानिंद नाजुक थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की पाकीज़ा महक थी। हमें गुमान था कि मंजिल बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन अगर रूहानी तौर पर देखें तो जिंदगी का सबसे हसीन मरहला मंजिल नहीं बल्कि वो मोड़ होता है जहां हम अजनबी होते हैं, क्योंकि जब दो अजनबी मिलते हैं तो वहां कोई बंदिश नहीं होती, कोई तवक्को नहीं होता और ना ही किसी उम्मीद के टूट जाने का कोई खौफ होता है। शायद इसलिए आज ये दिल शिद्दत से पुकार रहा है कि चलो चलो सब कुछ भुलाकर, इस जमाने के सारे तलक तजुर्बों को पीछे छोड़कर, जिंदगी को एक बार फिर उसी मासूम मोड़ पर ले चले जहां जन्नत के वो ख्वाब फिर से नए हो जाएं और इस फूलों जैसी मोहब्बत पर वक्त की कोई धूल ना हो।

कहते हैं कि रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत का सहारा नहीं होता। उस रोज ये लगता है कि बेकार जिए हम, जिस रोज सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। दरियाए मोहब्बत में है तूफान भी।

ये भंवर भी हर कश्ती की किस्मत में लेकिन किनारा नहीं होता। दोस्तों वाकई रोने से गमे दिल का गुजारा तो नहीं होता और हर अश्क मोहब्बत का सहारा भी नहीं होता। कितनी बड़ी हकीकत बयां की है शायर ने। हम अक्सर सोचते हैं कि आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और हम करते भी हैं, या हमारे बहते हुए अश्क हमारी मोहब्बत की गवाही बन जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि मोहब्बत सिर्फ आंसुओं की मोहताज नहीं होती। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो वो आंखों से नहीं खामोशी से बहता है। मोहब्बत का ये जो दरिया है ना दोस्तों, ये जितना खूबसूरत दिखता है इसके अंदर उतने ही तूफान और भंवर छिपे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसने इस दरिया में अपनी कश्ती उतारी है उसे साहिल मिल ही जाए। कुछ कश्तियां इस सफर के बीच में ही रूहानी तौर पर अमर भी हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तैरना छोड़ दें या मोहब्बत करना छोड़ दें, है ना।

दोस्तों, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में, जी हाँ, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत अजीब है ये, और मुझे कभी ना मिला। बशीर बद्र साहब की यही खासियत है कि वो इंसानी जज्बातों को इतनी नफीस लफ्ज दे देते हैं कि हर सुनने वाले को लगता है ये उसी के दिल की दास्तां है। इस पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों की इस भीड़ में जब ये दिल किसी एक चेहरे पर आकर ठहर जाता है, जब हम पूरी कायनात को भूलकर खुदा से सिर्फ उस एक शख्स की खैरियत और उसका साथ मांगते हैं, और वो एक शख्स भी अगर नसीब में ना लिखा हो तो ये पूरी दुनिया खाली और बेमायने सी लगने लगती है। और इसके आगे तो उन्होंने मोहब्बत का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच भी बयां किया है कि कभी कभी कोई इंसान हमारे बहुत करीब होता है, एक ही छत के नीचे होता है या साथ चल रहा होता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमसे मीलों दूर होता है। वो जिस्मानी तौर पर तो साथ होता है पर उसका दिल हमारे साथ नहीं धड़कता। ऐसी नजदीकी से तो वो फासला ही अच्छा, जहां दूर रहकर भी दो रूहें एक दूसरे में बसी होती हैं। ये पास होकर भी ना मिल पाने की जो कशिश है, जो बेबसी है, यही इस कलाम की रूह है। अगर आज की शाम आपके दिल के किसी कोने में भी यह मखमली सा दर्द छुपा है तो इन लफ्जों की गहराई को महसूस कीजिए। वक्त हुआ है 8:40 और कुछ सेकेंड, और इस वक्त के साथ आखिरी गजल आबशार में आपके लिए। आबशार के उस पार ठीक 9 हम फिर मिलेंगे प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: છે.
1: મેં પ્રિયંકા અરોડા. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए. पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल. सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी. आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते. और फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की

0: आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय

0: प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। That we can have more domestic petroleum. Third is we should diversify our sources. एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US.

जी 9:22 का वक्त हो चला है और इस वक्त के साथ ही बता दें आप सुन रहे पॉप टाइम ओनली विद आरजे प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। तो भाई विनीत कुमार का भी मेल आ गया है, लिखते हैं विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर टॉप टाइम पॉप टाइम होना चाहिए, टॉप टाइम नहीं, कोई बात नहीं। प्रस्तुत करने वाली प्रीति बहन जी को गुड इवनिंग, आपको भी अ वेरी गुड इवनिंग और प्रोग्राम लाजवाब लग रहा है, सुपर हिट आपकी बोली बहुत मीठी सुरीली भोजपुरी गाना आप सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और साथ में कुछ नाम लिखे हैं उन्होंने, ओमकार सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल भट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहनी हरदोई से, संजय अतरौली से। आपको कैसे इतने सारे नाम के साथ जगह भी याद हुए हैं भाई, पढ़ने में तो हमें लग रहा है हमने पूरा यूपी घूम लिया है। चलिए अच्छा लगा आपका मेल आया है। वकील अहमद का भी मेल आया है, अस्सलाम वालेकुम, और आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें आपका मेल पढ़ना अच्छा लग रहा है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी खाकर आकर खा लें भाई, हम प्रोग्राम कर लें फिर हम जरूर खाएंगे, हमारे लिए 2 रोटियां रख दीजिएगा। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है भाई, हमारे यहाँ भी गर्मी वैसी हो रही है जैसी आपके यहाँ हो रही है, क्योंकि हम कोई इस देश से बाहर थोड़ी ना आपके साथ हैं। और लिखते हैं आगे वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी, अरे क्या नाम लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, FM अच्छा अहमद नवाब, मुझे FM नवाब पड़ गए, कोई बात नहीं, अहमद नवाब तो वैसे भी FM में ही ऐसे लगता है हमारे साथ ही रहती है। अच्छा लगा आप लोगों की मेल आई और इतने सारे नाम आपने लिए, मुझे लग रहा है इनमें से तो कई सारे नाम वो है जिनके मेल आते हैं, है ना वकील अहमद जी, बताइएगा जरूर भाई। इसके साथ ही सुल्तान रजा का भी मेल आ गया, अस्सलाम वालेकुम, और देखिए सुल्तान जी आप ही से हमने कहा था हम एक बार जरूर पढ़ना इसको सीख जाएंगे, और अब हम क्या फर्राटेदार बोलते हैं, देखो फिर से बोल के दिखाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, है ना। और आगे लिखते हैं हमारी प्यारी प्यारी सी प्रीति मैम, कैसे हैं हम, बिल्कुल ठीक है और बहुत मस्त होंगी आप, क्योंकि आपकी आवाज बता रही है जी, हमारी आवाज पूरी तरीके से हमारे जज्बात को बयां नहीं कर पा रही कि कितनी खुशी हो रही है हमें आप लोगों के साथ यहाँ पर स्टूडियो में एक साथ बैठने पर, भले ही आपकी मेल आ रही हो क्या पर क्या करना, लेकिन लग तो रहा है आप सब हमारे साथ हैं। और आगे लिखते हैं, अच्छा देखो इनको सबका हाल पता है कि क्या पूछने वाले हैं, आप लोग पूछेंगे मैम कहाँ थी आप इतने दिनों से, तो इसका जवाब मेरे पास है, यानी सुल्तान जी लिख रहे हैं इनके पास है, क्योंकि इस बार आप गई थी पहाड़ों के बीच घूमने। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, हम पहाड़ों में गए थे घूमने के लिए, क्योंकि भाई छुट्टियां ही इसीलिए थी, घूमने फिरने नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, जब घुटनों में दर्द हो जाएगा तब, तो इसीलिए इन्हीं बीच घूमाओ अगर घुटनों में दर्द ना शुरू हुआ है। और लिख दे कल ज्योति मैम से पूछा था आपने, तो बस आपने कल पूछा और हम आज यहाँ हाजिर हो गए हैं, और आपका मेल पढ़ के बड़ी ही खुशी हुई। और लिखते कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा और अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा और पूरा राजा परिवार जी, शुक्रिया मेल करने के लिए। और किसका मेल आया, सैफ अंसारी का भी मेल आया, हाय मैम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मान अंसारी, मैं श्रीनगर लखीमपुर, अरे श्रीनगर लखीमपुर में भी श्रीनगर है, हमको तो पता ही नहीं चला, हम काहे के लिए पहाड़ों में गए उधर, हम इधर लखीमपुर ही ना हो आए होते, क्यों सुल्तान जी हमको पता ही नहीं आप वहां पे भी है श्रीनगर। और लखीमपुर से हूँ मैं, जल्दी जल्दी मेल कर रहा हूँ और जल्दी से पढ़ भी लें क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं नहीं भाई देखिए हमने आपका मेल पढ़ लिया है और अच्छी बात है आपने मेल किया है, और अपने फ़ोन को फटाफट चार्जिंग पे लगा दीजिए जब तक लाइट है। अहमद

आपका भी आ गया है मेल, वही खूबसूरत अंदाज में, बहुत सारे इमोजीज के साथ, वही उनका एक अलग ही अंदाज है गुड इवनिंग लिखने का। कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आई हैं आप। जी हम बिल्कुल ठीक हैं और हम बहुत दिनों बाद आए, ये सच है। आप याद करते हैं, जिस दिन आप दिल से याद करते हैं उस दिन हम यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। आप शार सच में बहुत बढ़िया था। ओके, और मैं कई दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, फाइनली कानों को आपकी आवाज सुनने को मिल गई, फाइनली हमें आप लोगों का मेल पढ़ने को मिल गया। पॉप टाइम मेरा फेवरेट प्रोग्राम है और जब आप आते हैं और भी ज्यादा फेवरेट हो जाता है। आपके बजाय गाने के साथ मैं भी गाती हूँ। जी ये तो हमें भी पता है, आप गाती बहुत अच्छा होंगी जरूर, ऐसा लगता है। वैभव प्रकाश का मेल है, आज हम केलो के शहर भुसावल महाराष्ट्र में वॉक करते करते पॉप टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी शुरुआत हुई है पॉप टाइम की आज। अर्ज किया है, बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बढ़ती है, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। मेरी तो जान अटकी है भाई, हम तो लखनऊ वाले हैं, हम लोग तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो भाई वैभव के साथ ही मेल को पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि अगला गाना कर रहा है आपका इंतजार, और वो भी कहां से है भाई, बरेली से है। इसको सुनिए और कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए।

भाई दोस्तों, वक्त हो गया 9:35 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही बता दें आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, यानी कि धड़कन लखनऊ की। और इस वक्त आपके साथ है आरजे प्रीति। और अगर अभी तक आपने मेल नहीं किया, आप सोच रहे हैं मेल करें ना करें, हमारा मेल शामिल होगा कि नहीं होगा, भाई 10 बजने से पहले अगर हमने आपका मेल शामिल नहीं किया तो जो कहिए वो हम हार जाएं। बिल्कुल आपका मेल शामिल होगा भाई, ये हमारे विश्वास के साथ हमारे लिसनर्स हमें मेल करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैम मेल जरूर शामिल करेंगी। तो भाई अगर जरा सा भी आपको संकोच है तो मेल करके देखिए फिर akashvanilakhnow@gmail.com पर। तो ये है आपके इम्तिहान का वक्त, और असल में कहें तो ये इम्तिहान का वक्त हमारे लिए होगा कि हम आपका मेल कैसे शामिल कर लें, लेकिन हम करेंगे जरूर अगर आपने मेल कर दी तो। जैसे कि राधे श्याम ने मेल किया, उससे पहले अरविंद जी का मेल शामिल करते हैं। लिखते हैं, डियर गुड इवनिंग आरजे प्रीति जी, और शांत सा मौसम और प्यारी सी आवाज, क्या खूब लिखा है आपने। आप लोगों को भी इधर बुला लेना चाहिए, इधर बैठा के एक प्रोग्राम तो जरूर कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है। आई एम प्रियल यादव, और ये शरीफाबाज सत्रिक बाराबंकी से मेल किया है, मीठी यादव नाम है, गंगागंज रोड भानमऊ और नकटौआ बाराबंकी। ये सब जगह भी होती है नकटौआ बाराबंकी। सॉन्ग सुपर कूल जी, शुक्रिया, बड़ा ही खूबसूरत सा इमोजी लगाया काला चश्मा पहन के। राधे श्याम जी का भी मेल आया जिला कासगंज से, मास्टर राधे श्याम शाकिया गुड इवनिंग। अच्छा, राधे श्याम शाकिया जी आपका नाम है, गुड इवनिंग प्रीति जी, आपको भी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त मस्त प्ले हो रहे हैं, मस्त प्ले हो रहे हैं, अच्छा वो वाला मस्त नहीं है, प्ले हो रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच राधे श्याम जी मेल करने के लिए। और राजकमल का भी मेल आया, लिखते हैं राजकमल यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से मेल किया, नमस्ते मैम जी कैसे हैं हम, बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, आप आती हैं तो फुल ऑन मजा आता है जी। शुक्रिया, खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए, साथ खाएंगे मैम जी, बिल्कुल वक्त बताइएगा और समय जगह बताइएगा, हम आ जाएंगे, साथ में खाना खाया जाएगा और आप खाना खिलाइएगा, डेजर्ट हमारी तरफ से। हमारे साथ हमारी वाइफ संगीता यादव, बेटा सावन कुमार यादव, अनिकेत, अंशिका और काजल पकड़ियापुर से सुन रहे हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं जी। आप सबको, पूरी फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कमल पांडे जी का मेल है, प्रीति मैम जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, दोस्तों के नाम लिए हैं, ओम प्रकाश भार्गव महोलिया कला, रमाकांत विश्वकर्मा बिल्डिंग वाले महोलिया कला, रुद्रा होटल वाले सहदेवा सुरेश जायसवाल भाई बेलारा वाले, इन सभी लोगों के साथ बैठकर ऐप के माध्यम से रेनबो कैफे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद मेल करने के लिए। मनोज विश्वकर्मा का मेल आया, मन प्रीति मैम जी कैसे हैं हम, बिल्कुल ठीक हैं, प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही है, अभी छत पर बैठकर प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा ये बताइएगा मौसम वहाँ कैसा है। और लिखते हैं, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई परदेसी विश्वकर्मा भी है, छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव मोहल्ला ठाकुर चौक, पूरा हम पता बता देते हैं जिसको शक हो सब पहुंच जाए। आज शायद भीष्म पितामह और शक्तिमान का किरदार निभाने वाले कलाकार मुकेश खन्ना जी का जन्मदिन है। अच्छा जी, प्रसिद्ध गायक शुभनाथ मुद्गल का भी है जी, है तो बिल्कुल है, अब गाना कौन सा उनका बजा दें कोई। प्रिंसी सिंह का भी मेल है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और जनपद हरदोई से मेल किया, प्रीति दी गुड इवनिंग, आपको भी वेरी गुड इवनिंग, पैकिंग कर रही हूँ अभी, मेहंदी भी लगनी है, कल मैं उन्नाव जा रही हूँ अपनी दीदी नीलू के घर शादी में शामिल होने, तो भाई शादी में जाइएगा, फोटो जरूर भेजिएगा, हमें मेल कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे भी आपके वो मेल में देख लेंगे। रॉयल अमित यादव का भी मेल आया, गुड इवनिंग आरजे प्रीति जी, जिस इंसान के साथ सुकून बहुत मिलता है उस इंसान के साथ वक्त भी बहुत कम मिलता है, बिल्कुल सही कहा है, ना जाने ऐसी कौन सी खास आप में अदा है, ये दिल है कि बार बार तुम्हें चुपके से सुनता है। शाम शांत और शांत शाम, ठंडी हवा और ऊपर मुस्कुराता चांद, क्या खूब लिखा है, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने आज हमारे लिए महफिल सजा दी हो, बिल्कुल सही कहा है। मेरी जिंदगी में मुझे दो काम करना बहुत अच्छा लगता है, एक गाना गाना और उसमें खो जाना, बहुत खूब लिखा है अमित जी, बहुत खूब लिखा है। तो चलिए अमित के साथ ही थोड़ा सा मेल पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि एक गाना कर रहा है इंतजार, कह रहा कभी यार कभी पार, तो भाई इधर उधर मत जाओ, सीधे इस गाने को प्ले कर देते हैं ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो भाई इसी व्यक्ति के साथ ही पढ़ते हैं शीलू मौर्य का भी मेल। शीलू मौर्य जी लिखती हैं कि मैं फैजुल्लागंज लखनऊ से हूँ, मैं 2 घंटे से FM सुन रही हूँ, खाना खाते हुए प्रोग्राम सुन रहे थे, अभी मैं छत पर टहल रही हूँ। जी टहलते रहिए क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोग्राम सुनकर अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रही हूँ। मैम हम भी लखनऊ से हैं जी, आप भी मुस्कुराइए भाई, जो भी लखनऊ में वो तो मुस्कुराते रहता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लखनऊ वाले ही मुस्कुराएं। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लखीमपुर, बाराबंकी और बहुत सारी जगहों से आते रहते हैं मेल ना, सभी लोग मुस्कुराते रहिए। वेद प्रकाश का भी मेल आया है, लिखते हैं लखीमपुर खीरी से मेल कर रहा हूँ, प्रतापगढ़, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि फाइनली आप कहना चाह रहे प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी का भी मेल आया, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, प्रीति मैम अगली बार हैदराबाद आना, यहाँ घूम के जाओ, हम आपको गोलकुंडा फोर्ट और चार मीनार, रामोजी फिल्म सिटी और ये सारी जगह ज़रूर दिखाएंगे, सब जगह घूम के जाओ। जी बिल्कुल, हम जब कभी भी आएंगे ना आपको ज़रूर बताएंगे, मेल ज़रूर करेंगे आपको कि हम आए हुए हैं, आप कहाँ हैं, हमें घुमा दीजिए। थैंक यू सो मच इतना कंसर्न होने के लिए। और मेल आया सौरभ प्रजापति का, उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से मेल किया, मैम जी शुभ संध्या, आपको भी बहुत दिन बाद आई है, तबीयत तो ठीक थी ना? बिल्कुल ठीक है, देखिए सुल्तान अजहर ने बता दिया, राज सारे खोल दिए यहाँ पे कि आप पहाड़ों पे गई थी। आपशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और भोजपुरी गाने की आपने फरमाइश की, जी बिल्कुल कोशिश करते हैं प्ले कर देंगे, और जानता हूँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है फिर भी बहुत सारे क्यूट क्यूट से इमोजीज भेजे हैं, प्लीज के साथ धन्यवाद भी भेज दिया है। जयप्रकाश राजपूत का मेल आया है, लिखते हैं आप कैसी हैं मैम जी, बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं जय जी, आपने अपने हालचाल नहीं बताए, बस हमारे हालचाल पूछ लिए हैं। मैनपुरी से मेल किया है, जितेंद्र नामदेव का भी मेल आया, जितेंद्र नामदेव जी ने खनौदी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है, प्रीति मैम जी क्या हाल है, शायद आज हमारी और आपकी इस कार्यक्रम के जरिए पहली मुलाकात है, बिल्कुल गाने बेहतरीन बजाए जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद जितेंद्र जी, ये आज पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए, जब भी आए हमें आपका मेल जरूर चाहिए जितेंद्र जी।

आपके साथ वादा होना चाहिए, आप हमसे वादा करिए, हमने तो कर ही लिया, जब भी आपका मेल आएगा हम जरूर शामिल करेंगे। बबीता राव का भी मेल आया, वही खूबसूरत अंदाज में, कलरफुल। भाई बबीता जी कैसे इतना वक्त निकाल लेती हैं, और प्रीति मैम जी को इतने, मतलब क्या ही बोले, शब्द नहीं है। पता बेली कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ। मैम जी आपको 8 बजे से सुन रही, मुझे आपका गजलों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, रेनबो कैफे भी एकदम झकास लग रहा है। सॉरी मैम जी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आज रेनबो कैफे प्रोग्राम का दिन है। जी बिल्कुल, वही तो चल रहा है, रेनबो कैफे वही चल रहा है, जैसा आपने कहा भाई वही चल रहा है। मैम जी आपका प्रोग्राम दोस्त विनीता दी, अच्छा रजनीश भाई, रोशनी रावत जी, रविशंकर भाई, सोम भाई, अनुराधा, नीलू, गुलबशाह, महेंद्र भाई, तालिब, आसिफ, शायबान, सारी जी, सब लोग एक साथ अलग अलग जगह से बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और आपके प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम एकदम मस्त शानदार लग रहा है। मैम जी मैं आपको रजनीगंधा प्रोग्राम तक सुनूंगी जी, रहिएगा जरूर, और थैंक यू सो मच मेल करने के लिए और इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। मूसा शेख जी का भी मेल आया है, लिखते हैं प्यार भरा आदाब, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। और शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना जी, और जोगिंदर जी का भी मेल आया है और लिखते हैं मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे होंगे, मौसम यहाँ बहुत अच्छे, आम खाने के लिए आ जाइए, हम सभी लोग आपका इंतजार करेंगे। भावेश सिंह जी ने मेल किया है और ये ग्राम धेड़ाओ माऊ धेड़े माऊ तहसील मलियाबाद से मेल किया है, लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से, और 11 साल है उम्र, अपने पापा के मेल से मेल कर रहा हूँ, कृपया मेरा मेल जरूर शामिल कर लें। जी शामिल कर लिया है बेटा आपका भी मेल, भाई उम्र के हिसाब से तो हम आपको बेटा ही कहेंगे। मम्मी पवन कुमारी सिंह, पापा जोगिंदर सिंह, मामा सूरज, धीरज, अवध सिंह और ऋषभ सिंह का नाम जरूर लीजिएगा, ले लिया है हमने नाम, आपका मेल भी हमने शामिल कर लिया है। वकील अहमद जी का मेल आया है, नमस्ते आज दोबारा ईमेल कर रहे हैं, वकील अहमद मंसूर कटका हथौड़ी जिला सीतापुर से, और लिखते हैं कि अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी अहमद नवाब सभी सुनते होंगे, ईमेल भी करते हैं। जी सभी लोग सुनते भी ईमेल भी करते हैं। और देखिए वक्त हो गया 9:54 का वक्त, और इसके साथ ही गाना हम सुनवा देते हैं, सुल्ताना है ये गाना, और देखते हैं अगर वक्त बचा तो एक और मेल, एक और गाना सुनवाएंगे, अगर मेल आ गई तो उसमें उसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन अभी से मैं आपको बता दें कि रेनबो कैफे के उस पार कर रहा है रजनीगंधा आपका इंतजार, और साथ ही साथ हम रहेंगे आपके साथ रात 12 बजे तक ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और आज आपके साथ है आरजे प्रीति।

मृतकों की आत्मा की सदगति व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु श्री राम लला के श्री चरणों में प्रार्थना की गई। साथ ही दुखी परिवारजनों, संबंधियों, मित्रों को धैर्य व साहस प्रदान करने की प्रभु से कामना की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। देश की अखंडता के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया गया। वहीं पीलीभीत जिले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग सिंह के निर्देशन में 15 कोचिंग सेंटरों व लाइब्रेरी पर टीमों द्वारा सघन जांच की गई, जिसमें आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न मिलने और बाहर निकलने के सक्रिय रास्ते होने पर इन सेंटर चालकों को नोटिस जारी की गई है। चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने एवं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक

गर्भवती महिला का समय पर पंजीकरण एवं सुरक्षित प्रसव संस्थागत रूप से कराया जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कोई एहसास जो महकता है ढल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

रात की इस खामोशी में हर कोई सोने की तैयारी में है। तब कुछ जज्बात जागने लगते हैं, वो जज्बात जो लफ्जों के मोहताज नहीं बल्कि पुराने गीतों की सुरीली धुन में लिपटे होते हैं। कुछ गानों का कारवां नहीं है, ये तो एक इबादत है उस दौर की, जहां मोहब्बत जिस्मानी नहीं होती थी, रूहानी हुआ करती थी, जहां प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता था बल्कि किसी की याद में मुकम्मल हो जाना होता था। कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, पर कुछ यादें और कुछ नगमे कभी पुराने ही नहीं होते। वो आज भी दिल के किसी कोने में धड़कते हैं, डिजिटल धड़कनों की तरह नहीं बल्कि उस पुराने खत की तरह जिसकी खुशबू आज भी ताजा है। तो अपनी तन्हाई को एक खूबसूरत हम सफर दीजिए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और खो जाइए इस रूहानी महक में, क्योंकि जब तक ये नगमे जिंदा हैं, हमारी और आपकी मोहब्बत का ये राब्ता भी जिंदा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे प्रीति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। चलिए शुरू करते हैं रजनीगंधा का ये रूहानी सफर इस पहले नगमे के साथ।

दोस्तों, लोग कहते हैं कि मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए, तस्वीरों में, तोहफों में, दुनिया के सामने। पर सच कहूं, सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो है जो बेहद खामोश होती है, जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और रूह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। एक ऐसा राब्ता जिसे किसी वादे की, किसी दावे की जरूरत ही नहीं होती, जहां दो दिल मीलों दूर बैठकर भी एक दूसरे की खामोशी को पढ़ लेते हैं। जब आप बिना कुछ कहे सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखकर उसका पूरा आसमान नाप लेते हैं, वही तो है रूह का राब्ता। इस शोरगुल से भरी दुनिया में जहां हर रिश्ता अपनी मौजूदगी का ढिंढोरा पीट रहा है, वहां कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी मोहब्बत को इबादत की तरह दिल के सबसे पाक कोने में छुपा कर रखते हैं। उनका प्यार किसी नुमाइश का मोहताज नहीं होता। वो जब तन्हा होते हैं तो महज आंखें मूंद कर उस एक शख्स को अपने इतने करीब महसूस कर लेते हैं कि फासले खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। ये वो एहसास है जहां जिस्मों की बंदिशें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रूह से रूह का एक अटूट सा सिरा बंधा होता है। आप सुनते रहिए रजनीगंधा।

ये जो सुहानी चांदनी रातें होती हैं, ये दरअसल एक खूबसूरत सी साजिश होती है। एक ऐसी साजिश जहां आसमान का चांद जमीन के दो दिलों को एक दूसरे की रूह के और करीब ले आता है। दुनिया तो सो जाती है, सारे शोर थम जाते हैं ताकि इन खामोश लम्हों में सिर्फ तुम्हारी यादें मेरी सांसों की रफ्तार को तय कर सके। अजीब सी बेकरारी है ना? जब इस ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर गुजरता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे तुमने चुपके से मेरे कानों में कुछ कह दिया हो। तुम्हारी वो बातें, वो अधूरी मुलाकातें, वो अधूरी मुस्कुराहट इस सन्नाटे में इतनी साफ सुनाई देती है कि नींद आंखों की दहलीज तक आकर भी लौट जाती है। इस चांदनी की रोशनी में तुम्हारा अक्स और भी गहरा होता जाता है और दिल इस ख्याल से कांप उठता है कि तुम दूर होकर भी मेरे इतने करीब कैसे हो सकते हो। तो अगर आज आपकी रात भी किसी की याद की इस मखमली कैद में है तो चलिए इस तड़प को, इस पाकीजा इबादत को सुरों का एक हम सफर देते हैं। सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस नए दौर की चमक दमक में हर चीज़ कितनी जल्दी बदल जाती है। लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, और यहाँ तक कि रिश्ते भी मौसम की तरह पल भर में अपनी रंगत बदल देते हैं। सब कुछ इतना शॉर्ट टर्म है कि लोग अब ठहरना ही भूल गए हैं। पर इसी बदलते हुए वक्त के बीच दिल के किसी सुनसान कोने में एक अजीब सी जिद पलती है, एक तलाश सदाबहार, एक ऐसी तलाश जो किसी नए चेहरे की नहीं है, बल्कि उस पुराने कभी ना मिटने वाले एहसास की है। हम आज के दौर में रहकर भी एक ऐसी मोहब्बत ढूंढ रहे हैं जो वक्त की पाबंद ना हो। अजीब सी कश्मकश है ना। हम उस शख्स की बाहों में उम्र भर का सुकून तलाश करते हैं जो खुद कल की धूप से डर कर छांव बदल लेता है। हम पन्नों पर अमिट स्याही ढूंढ रहे हैं जबकि दुनिया स्क्रीन पर लिखे लफ्जों की तरह हर बात को मिटा देने की आदी हो चुकी है। तो फिर इस तलाश को हम क्या कहें? एक नासमझ, एक नासमझ दिल की नादान ख्वाहिश, या इस खोखली दुनिया के बीच अपनी रूह को जिंदा रखने की एक आखिरी कोशिश, जहां हम एक ऐसे हमसफर की आस में जागे हैं जिसका शायद कोई वजूद ही नहीं, लेकिन दिल अब भी इंतजार करता है।

कुछ पन्ने जिंदगी के फिर से पलटने का मन करता है, कुछ पन्ने जिंदगी के फिर से पलटने का मन करता है, पुराने गीतों की छांव में जरा ठहरने का मन करता है, इस भागती हुई दुनिया को कुछ देर के लिए रोककर आज फिर उन पुरानी यादों में उतरने का मन करता है। सुनते रहिए रजनीगंधा, सिर्फ मेरे यानी आरजे प्रीति के साथ।

तो क्या कभी आपने गौर किया है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में सब कुछ कितनी जल्दी गुजर जाता है? जरूर गौर किया होगा। सुबह से शाम और शाम से रात। लोग कहते हैं कि आज के दौर में रिश्तों को देने के लिए वक्त ही नहीं बचा, पर सच कहूं मोहब्बत कभी वक्त की मोहताज नहीं होती। वो तो बस उस बेहद मशरूफ दिन के बीच में से चुराया हुआ वो एक पल मांगती है, बस एक पल, जहां कोई बिना किसी मतलब के सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए फोन कर दे। आज के दौर में किसी को अपना वो कीमती वक्त देना ही दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। और दूसरी तरफ वो इंतजार, जब आंखें मुसलसल उस एक नाम को ढूंढती है, बस एक नाम को, दिल हर घंटी पर धड़क उठता है और वक्त जैसे थम सा जाता है। एक ऐसा इंतजार जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक बेनाम सी उम्मीद होती है कि जब भी वो लौट कर आएगा, सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा।